मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 मई सन 2026 है। इस वक्त सवेरे के 5:57 होने को है। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को है। आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के

0: दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। सवेरे के 6:05 हो रहे हैं। ये वक्त है भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम वंदना का।

भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम वंदना में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आज आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त कामिनी। हर सुबह उठकर यह प्रार्थना करो कि हे प्रभु, रात सुख की बीत गई, दिन निकला है, मेरी वाणी से, मेरे हृदय से, मेरी आँखों से, मेरे हाथों से कभी किसी का बुरा ना हो। गई तो आइए श्रोता, वंदना कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हवेली संगीत के माध्यम से।

सूरज की पहली किरण और भोर की हवा, प्रभु का नाम लेकर शुरू हो जिंदगी की हर अदा। हर पल मिले खुशियां और मिट जाएं सारे गम, ईश्वर के चरणों में बीते हर सुबह और हर कदम।

सो जाता है हर कोई अपने कल के लिए, जागता है मेरा भगवान सबके हल के लिए, जो झुक जाए उनके चरणों में जिंदगी की हर मुश्किल हो जाती है आसान।

हे ईश्वर, इस प्यारी सी सुबह में बस इतनी सी प्रार्थना है कि हर एक के जीवन में हमेशा खुशियों की बहार भरना।

राम नाम की माला जपो, सुबह का करो विचार, धन्य हो जाए ये जीवन जप जपे राम का नाम।

ये थी वंदना, भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 6:35 हो रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से रिले प्रसारित की जाने वाले कुछ खास खास कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में, कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत।

सबसे पहले 6:40 पर यानी अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। छह बजकर 50 मिनट पर किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती में आज। किसान भाइयों का और कार्यक्रम कृषि जगत दोपहर 2:30 पर और खेती और घर शाम को 7:00। सुगम संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सवेरे 7:45 पर, सवेरे 11:30 पर और रात्रि 9:15 पर। शास्त्रीय संगीत सुनना न भूलिएगा सवेरे 11:00। सहेलियां री बाड़ी ग्रामीण महिलाओं का ये कार्यक्रम होगा दोपहर 1:05 पर। युवाणी युवा श्रोताओं का ये दैनिक कार्यक्रम शाम 5:00 आप सुनना न भूलिएगा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं सवेरे 7:00, सवेरे 10:00, दोपहर 12:00, दोपहर 1:45 पर, शाम को 6:05 पर, रात को 8:00, 9:30 पर और रात्रि 10:00 भी आप फिल्मी नगमों का आनंद ले सकते हैं। शाम 5:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम घीना रिवाता सुनना ना भूलिएगा आकाशवाणी जयपुर से। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनिएगा 9:30 पर।

नमस्कार उदयपुर, हमारा मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर ये कार्यक्रम आप सुनिएगा 8:30 से 9:30 तक। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से रिले प्रसारित किए जाने वाले कुछ खास खास कार्यक्रमों के बारे में कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 6:40 होने को है। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ सीता पुष्प वाटिका में आई हैं। वहां उन्होंने उन दो राजकुमारों को देखा जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी से जनकपुर वासियों का मन अपने वश में कर लिया है। उधर सीता तथा उनकी सखियों के कंगनों, करधनी, पाजेब आदि की मधुर ध्वनि सुन श्री राम मंत्र मुग्ध हो गए। सीता के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए श्री राम की आंखें मानो चकोर बन गईं, अपलक उन्हें देखते रहे। कथा है कि प्रत्येक व्यक्ति की पलकों में निम का निवास होता है, जिनके कारण पलकें खुलती और बंद होती रहती हैं। निमि राजा जनक के पूर्वज थे। प्रस्तुत प्रसंग में भक्त कवि की कल्पना है कि निमि ने लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित न जानकर श्री राम की पलकों से अपना निवास हटा लिया, जिससे उनकी पलकें खुली की खुली रह गईं।

सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 6:50 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम खेती में आज।

खेती में आज कार्यक्रम सुनवा वाला सगला किसान भाया ने नीता कोठारी रो राम राम। किसान भाया आज बात करंगा अणी महीना आपाने खेती बाड़ी रा कसा कसा काम करना है। साग भाजी री फसल जी किसान भाई ले रहा है वी फूल गोभी रे महीने अगेती उन्नत प्रजाति जिसरे की पूसा कार्तिक शंकर पूसा दीपाली पूसा कार्तिकी पूसा अश्विनी पूसा मेघना अणा सब किस्मारो चयन कर सके। बीज दर और वावणी री बात करा तो हाउ जमावर क्षमता वाला 500-600 ग्राम और शंकर किस्मारे वास्ते 350-400 ग्राम बीज प्रति हेक्टर रे दर पर्याप्त वेगा। फूल गोभी री अगेती वावणी रो टेम मध्य मई और जून में बीज वावणी रो काम कर सका। 5-6 सप्ताह वाली जा पोत वे वंडो रोपाई भी आपा अणी टेम पे कर सका। बीज उपचार वास्ते 22 टीन या पचे केप्टोन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज री दरू या पचे ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज रे हिसाब हूँ करनो है। नर्सरी क्यारी छायादार और पर्याप्त नमी वाला जगह पे बनानी चाहे। क्यारी रे आकार री बात करा तो 3x0.45 0.15 मीटर और 100 वर्ग मीटर नर्सरी क्यारी प्रति हेक्टर क्षेत्र वास्ते पर्याप्त वेगा। पोषक तत्व प्रबंधन रे वास्ते खेत री तैयारी रे टेम पे 25-30 टन प्रति हेक्टर री दरू हाउ सड़ी तकी गोबर री खाद मिट्टी में मिलाई देनो है। किसान भाया रोपाई रे पहला 120 किलोग्राम नाइट्रोजन 100 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टर और खेत री अंतिम तैयारी रे टेम पे आधी मात्रा में नाइट्रोजन और पूरी मात्रा में फास्फोरस और पोटास जो है जमीन में मिलाई देना है। वची तकी जा नाइट्रोजन री बराबर मात्रा है मीने दो हिस्सा में मांट देनो है। एक हिस्सा ने रोपाई रे एक महीना रे केड़े निराई गुड़ाई रे लारे नाकनो है और दूजो जो वचियो तो को हिस्सो है विने फूल वनवारी स्थिति में पौधा पे मिट्टी चढ़ावारे टेम पे मिलाई देनो है। खरपतवार नियंत्रण और जल प्रबंधन री बात करा तो अंडे वास्ते रोपयू पहली बेसालीन 2.5 लीटर या पचे स्टॉम 3.3 लीटर प्रति हेक्टर री दरू छिड़काव करने हल्की पाणत कर देनी है। अगेती फसल में रोपाई रे तुरंत बाद और वनडे बाद साप्ताहिक अंतराल पे और मध्यम और पछेती फसल में 10-15 दना रे अंतराल पे पाणत करनी है। रोग प्रबंधन री बात करा तो फूल गोभी री नर्सरी अवस्था में आर्द्र गलन फफूंद नामक रोग वे जावे। यो पौधा रे तना सतह रे बड़े ऊँ गलवा लागे और पौधा मर जावे। अंडे नियंत्रण रे वास्ते ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति मिलीलीटर में मिलाई ने बीजा ने उपचारित कर देनो है। या बचे ट्राइकोडर्मा 25 ग्राम प्रति 10 किलोग्राम सड़ी तकी गोबरी खाद ने नर्सरी में 100 वर्ग मीटर में हाउ तरीका मिलाई देनी है। या बचे 22 टीन या बचे केप्टोन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज री दरू बीज ने उपचारित कर लेनो है। या बचे 22 टीन या केप्टोन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाई ने छिड़काव कर सका तो अणी रोग पे जो है नियंत्रण वे सकेगा। फूल गोभी गांठ गोभी पत्ता गोभी गाजर मूली पालक मेथी और शलजम री बीज वाली फसलारी कटाई कर सका। बीजा ने अत्रो हुकावनो है कि वन में 8% तक इस नमी रहे।

आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के ठीक 7 बज रहे हैं। आइए श्रोताओ, अब आपको सुनवाते हैं सदाबहार नगमे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में सुनिए इस फिल्म का ये गीत।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

पूछो ना यार क्या हुआ। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, पद्मिनी और ऋषि कपूर, इन सभी की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा नगमा। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमों का एक कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को फिल्म तीसरी मंजिल में।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के बाद में आइए सुनते हैं अब किशोर कुमार और आशा भोसले को फिल्म चलती का नाम गाड़ी में।

चलती का नाम गाड़ी, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और यशुदास को फिल्म छोटी सी बात में।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
5: रुक जा गुड्डू।
6: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
4: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
7: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
6: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
8: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

दिल क्या करे किसी को, किसी से प्यार हो जाए। जूली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। आइए किशोर कुमार और लता मंगेशकर को सुनते हैं हीरा पन्ना फिल्म के इस गीत में।

0: हीरा पन्ना, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 7:45 हो रहे हैं। ये वक्त है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। तो आइए आज सुगम संगीत में हम एक बार फिर याद करते हैं आशा भोसले को। जी हाँ, आशा भोसले की गाई गजलें अब हम सुनेंगे।

सलोना साथ सजन है और मैं हूँ आशा भोसले की गाई ये गज़ल अभी आपने सुनी। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में अगली गज़ल।

कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे हैं उनकी गाई ये गज़लें। तो लीजिए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में अगली और आखिरी ये गज़ल पेश नज़र है।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुनी आशा भोसले की गाई ये गजलें सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार प्रभात और 8:15 पर अंग्रेजी में मॉर्निंग न्यूज। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम

0: सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और बीएसएफ द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
6: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने टीएमसी का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल सीआईएम का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला हो, कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और सीएम का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी। प्रियंका
0: जी, जी धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमरीका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
7: अमरीका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1

0: जीत, दो ड्रॉ और एक हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद प्रियंका। एआई से

0: का विषय है सतत चाय उत्पादन मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी, चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग श्वांगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Paltar Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, "Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation. The Prime Minister said that

0: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन के प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर में आज आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त कामिनी और मेरे साथ है
1: रश्मि। तो स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। और ये जो सूरज की किरणें हैं और ये जो महकी हवा है ये यही कहती है कि गिरो तो उठो, थमो तो चलो और हारो तो फिर से शुरुआत करो, क्योंकि हर नया सवेरा आपके लिए कई उम्मीदें लेकर आता है। तो आइए हम भी चलते हैं और दौड़ चलते हैं इस सफर में।

0: तो महकी हवा मुझे ले चल वहां। कहां ले चल रहे हैं? आज हम आपको ले चल रहे हैं ग्रीन एंड गेट अवे थर्सडे की ओर।
1: बिल्कुल, और ग्रीन एंड गेट अवे थर्सडे में शुरुआत होगी कुछ स्थानीय खबरों से। आईपीएल अपडेट के साथ साथ आज के दिन विशेष की बात करेंगे, और आज है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, जिसकी बात हम अपने श्रोताओं से करेंगे।
0: साथ ही आज हम राजीव गांधी जी को याद करेंगे, आज है उनकी पुण्यतिथि
1: जी। और इसी के साथ पर्यावरण संवाद के अंतर रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल की अवधारणा की बातचीत हमारे श्रोताओं से होगी, और साथ ही ट्रेवल टॉक के अंतर्गत आज हमारे श्रोताओं को लेकर चलेंगे अंबाजी।
0: बिल्कुल, और अवेयरनेस भी बहुत जरूरी रश्मि, इसलिए बच्चों में वित्तीय जागरूकता कैसे जगाएं और उन्हें कैसे समझाएं उसके बारे में हम बताएंगे। और साथ ही आज 9:10 के बाद में हम आपको सुनवाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन सी कहानी डॉक्टर विमला भंडारी द्वारा।
1: बिल्कुल, तो देखिए बहुत सारा है आज के पिटारे में हमारे साथ, लेकिन आज के दिन विशेष की बात करते हैं उससे जिससे हमारे दिन की शुरुआत होती है।
0: बिल्कुल,
1: और वो होती है चाय। देखिए इसे कई लोग लत के रूप में कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये जिंदगी की खुराक है, लेकिन शायद कम लोग जानते हैं कि मेहमान नवाजी के प्रतीक इस चाय का भी एक विशेष दिन होता है, वो है आज 21 मई का दिन।
0: बिल्कुल रश्मि, सुबह की जो शुरुआत होती है इन चाय की चुस्कियों के साथ होती है, और सदियों से सभी संस्कृति के लोग चाय का आनंद लेते आ रहे हैं, भले ही वो घर हो, ऑफिस हो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, बैंक, गार्डन, जू, चौपाटी, नदी, तालाब, झील, किनारे, हंसी हो, खुशी हो, गम हो, कुछ भी हो, ये चाय हमारा हर दिन और हर दिल अजीज होती है, जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा पीने वाला और लोकप्रिय पेय पदार्थ है।
1: बिल्कुल, और देखिए इसके कई रूप इन दिनों में हम देखते हैं, कहीं लेमन टी है तो कहीं ग्रीन टी है, कहीं हर्बल टी

0: है, केवल वो दूध वाली चाय अब चलन में नहीं रही है। बहुत सारी ऐसी टीज हैं जो कि आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती हैं। और इस दिन की बात करें तो इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई ताकि चाय के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।
1: रश्मि, चाय का एक बहुत ही लंबा और गौरवशाली इतिहास है। ऐसा माना जाता है कि चाय की उत्पत्ति 5000 साल पहले चीन में हुई। चाय जल्द ही भारत, श्रीलंका सहित एशिया के अन्य हिस्सों में भी फैल गई और अंततः यूरोप और अमेरिका में भी आ गई। और यह एक ऐसा पेय है जो विश्राम, सुकून और अच्छे स्वास्थ्य के भी जुड़ा हुआ है, जिससे स्वास्थ्य लाभों के अलावा चाय एक जो है टिकाऊ फसल भी है। अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को बीमारियों से भी बचाने में मदद करता है। और चाय की फसल को हम बताएं तो कि ज़्यादा पानी और खाद की आवश्यकता ही नहीं होती। चाय उत्पादन से रोजगार सृजित भी होता है और ग्रामीण समुदाय को सहायता भी मिलती
0: बिल्कुल
1: है।
0: देखिए, आपने रोजगार की बात की तो इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि चाय उत्पादकों को और श्रमिकों को सम्मान देना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना, विश्व भर में चाय की सांस्कृतिक विरासत को सहेजना। वैसे तो चाय के बहुत से उत्पादक देश हैं जिसमें भारत, चाइना, श्रीलंका, कीनिया सभी हैं, लेकिन भारत के मुख्य क्षेत्रों की बात करें तो आसाम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में चाय जो है बहुत उत्पादित होती है।
1: तो इसीलिए आज के दिन 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि हम हमारे जीवन में चाय के महत्व के बारे में और जागरूकता बता सकें।
0: बिल्कुल, और इस दिन की हर साल एक विशेष थीम होती है। इस बार की थीम है फॉरेस्टिंग ग्रोथ एंड इंक्लूजन। ये थीम बताती है कि चाय के उद्योग में निष्पक्ष मजदूरी, छोटे किसानों का समर्थन करना और समावेशी विकास को केंद्रित करना।

और कामिनी, अब बात करते हैं आईपीएल की। तो आईपीएल के 65वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 4 विकेट से मुंबई इंडियंस को हरा दिया। कोलकाता ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी को चुना। मुंबई ने 147 रन बनाए 8 विकेट खोकर, और मैच में कोलकाता को 148 रन का मामूली लक्ष्य मिला, जिसे उसने 6 विकेट खोकर 19

0: ओवर में ही प्राप्त कर लिया। मुंबई ने जो ये स्कोर बनाया वो इस सीजन में किसी भी टीम का बिना ऑल आउट हुए दूसरा सबसे छोटा स्कोर रहा। इससे पहले कोलकाता के खिलाफ दिल्ली ने 142 रन बनाए थे 8 विकेट खोकर। हालांकि मुंबई इंडियंस शुरुआती 6 ओवर में ही मुकाबले में पिछड़ गई थी, क्योंकि टॉप 4 बैट्समैन पावर प्ले के भीतर ही पवेलियन की ओर लौट गए। और जहां तक जिक्र करें ऑरेंज कैप का, तो ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे अभी हैं वैभव सूर्यवंशी 579 रन के साथ। और अगर पर्पल कैप की बात करें तो बेंगलुरु के भुवनेश्वर के पास है 24 विकेट के साथ ये पर्पल कैप। और आज के मैच की बात की जाए तो आज 7:30 बजे मैच होने वाला है गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। अब देखते हैं ये मुकाबला क्या रन लेकर आता है।
1: तो रश्मि, तो ये था हमारा IPL अपडेट।

0: तो रश्मित, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज जो दिन विशेष है उसके बारे में बात करेंगे। आज है 21 मई, यानी आज के दिन हम राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। यह दिन हमें उन निर्दोष नागरिकों की याद दिलाता है जिन्होंने आतंकी विभीषिका झेली है, और साथ ही उन वीर जवानों का भी जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।
1: बिल्कुल कामिनी, देखिए भारत हमेशा से शांति, करुणा और मानवता की भूमि रहा है, लेकिन जब भी आतंकवाद ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है, नया भारत चुप नहीं रहा। आज का भारत न केवल आतंक का डटकर सामना करता है, बल्कि अब दुश्मन को उसके घर में जाकर घुसकर जवाब भी देता है। वैसे आज का दिन जो है हम याद कर रहे हैं राजीव गांधी जी को, उनकी पुण्यतिथि पर, और इसी दिन को याद करते हुए मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस।
0: बिल्कुल, भारत में हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंक वाद विरोधी दिवस जो मनाया जाता है, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य देश में शांति, सद्भाव और एकता को बढ़ावा देना, युवाओं को हिंसा और आतंकवाद से दूर रखना तथा आतंकवाद के खतरों के प्रति जागरूकता फैलाना भी है। और जैसा कि आपने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की एक आत्मघाती आतंकवादी हमले में हत्या कर दी गई थी, उनकी स्मृति और देश से आतंकवाद को मिटाने के संकल्प के रूप में इस दिन को चुना गया। और आधुनिक भारत के शिल्पी, भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर उन्हें आज हम याद करते हैं और नमन करते हैं, और आज़ाद भारत के लिए जो उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिए उसके लिए हमेशा भारत उनका ऋणी रहेगा।
1: बिल्कुल, देखिए और भारत सरकार द्वारा 2026 में एक नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार को आतंकवाद के विरुद्ध भारत की प्रमुख नीति के रूप में देखा जा रहा है। कामिनी, देखिए प्रहार का मतलब होता है पी फॉर प्रिवेंशन, आर फॉर रिस्पॉन्स और ए फॉर एग्रीगेटिंग कैपेसिटी, यानी कुल क्षमता का

0: उपयोग करना, एच फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रूल्स ऑफ लॉ, और ए फॉर अगेन एटेन्यूएटिंग रेडिकलाइसिस यानी कट्टरपंथ को कम करना, और इसके बाद के ए का मतलब होता है अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को समन्वित करना, और उसके बाद आर का मतलब होता है रिकवरी एंड रेजिलियंस यानी पुनर्प्राप्ति और लचीलापन। आज हमने भारत में देखा ही है कि चाहे वो उरी हमला हो या फिर पुलवामा की कायर जो घटना है वो हो, भारत ने जवाब में केवल बयान नहीं दिए बल्कि घर में घुसकर उन्हें मारा। उरी के शहीदों का बदला हमारी सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए दिया। तो अब हमारा भारत सिर्फ चुप नहीं रहता लेकिन जवाब देना भी चाहता है, क्योंकि जब भारत की बात आती है तो फिर हम किसी को नहीं छोड़ते।
1: बिल्कुल रश्मि, तो कुछ लोग जमीन पर राज करते हैं, कुछ लोग दिलों पर। मरहूम राजीव गांधी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने जमीन पर ही नहीं बल्कि दिलों पर भी हुकूमत की। वे भले ही आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन हमारे दिलों में आज भी वे जिंदा हैं।

0: तो ये तो थी हमारे देश की बात। और देश की जब बात करते हैं तब हम कहाँ कहाँ गुम हो जाते हैं। ऐसा लगता है कभी हम नॉर्थ में कई जगहों को देखते हैं, कभी साउथ में देखते हैं, ईस्ट और वेस्ट, मतलब कौन सा कोना ऐसा नहीं है जहाँ जाने का मन हमें कभी ना करे। तो अब हम कुछ ट्रैवल टॉक की बात कर लें। और आज यात्रा संवाद में हम किस पर्यटन स्थल के बारे में बात कर रहे हैं?
1: बिल्कुल, देखिए आज हम जाने वाले हैं अंबाजी टेम्पल, जो कि आस्था, संस्कृति और प्राकृतिक

0: प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित ये तीर्थ राजस्थान और गुजरात की सीमा के निकट अरावली पर्वत माला की गोद में बसा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ माँ सती का हृदय भाग गिरा था, इसीलिए इससे 51 शक्तिपीठों में विशेष स्थान प्राप्त है। मंदिर में देवी की प्रतिमा नहीं है बल्कि श्री यंत्र की पूजा की जाती है, जो इसकी सबसे अनूठी विशेषता मानी जाती है।
1: बिल्कुल रश्मि, गुजरात राजस्थान सीमा के पास अरावली माला की अरसूरी पहाड़ियों में स्थित अंबाजी शक्ति पीठ मंदिर, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो 51 पवित्र शक्ति पीठों में से एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। और यह मंदिर लाखों तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है, जो मां अंबा की पूजा अर्चना करने यहां आते हैं, क्योंकि पारंपरिक रूप से यह माना जाता है कि देवी सती का हृदय इसी स्थान पर गिरा था।
0: बिल्कुल, देखिए कि इसके मुख्य आकर्षणों की बात करें तो अंबाजी मंदिर में सफ़ेद संगमरमर से निर्मित यह मंदिर अपनी भव्यता और आध्यात्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। सुबह और शाम की आरती का दृश्य भक्तों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। इसी के साथ यहाँ है गब्बर पर्वत को माँ अम्बा का मूल स्थान माना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों और रोप वे दोनों की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, और शाम के समय यहाँ से अरावली की सुंदर वादियाँ बहुत ही मन मोह लेती हैं।
1: बिल्कुल रश्मित, अगर दर्शन करने की बात करें तो दर्शन करने का समय यहाँ पर सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक है, दोपहर में 12 बजे से 4:15 बजे तक, और शाम को 6:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक यहाँ का दर्शन का समय है। और साथ ही यहाँ कैसे पहुँचें तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन आबू रोड है, जो यहाँ से मात्र 20 से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो अहमदाबाद से लगभग 190 किलोमीटर दूर और गुजरात और राजस्थान के सभी प्रमुख शहरों के लिए यहाँ बसें और टैक्सियाँ आसानी से मिल जाते हैं। आप भले ही गुजरात से आ रहे हैं, आप भले ही राजस्थान से जा रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: आप कहीं ना कहीं से बहुत आसानी से, बहुत अच्छी रोड है वहाँ चले जाएंगे। और पालनपुर से यह 65 किलोमीटर दूर है, माउंट आबू से 45 किलोमीटर, आबू रोड से 20 किलोमीटर, अहमदाबाद से 190 किलोमीटर और गुजरात राजस्थान सीमा के पास कड़ियादरा से 50 किलोमीटर दूरी पर ये मंदिर स्थित है।
0: बिल्कुल, देखिए और आपने घूमने फिरने की बात की तो अक्टूबर से मार्च का जो समय होता है वो यहाँ के लिए सबसे अनुकूल होता है, क्योंकि मानसून में अरावली की हरियाली इस क्षेत्र की सुंदरता को और भी बढ़ाती है। साथ ही अगर आप यहाँ गई हों कामिनी, तो यहाँ पर मिलने वाला एक प्रसाद है जिसका नाम है मोहन थाल प्रसाद, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि अंबाजी की यात्रा केवल एक तीर्थ दर्शन नहीं है, बल्कि श्रद्धा, प्रकृति और लोक संस्कृति का एक ऐसा अनुभव है, जहां मंदिर की घंटियों के साथ साथ अरावली की हवाएं भी भक्ति का संदेश सुनाती हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा। और जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर जो आकर्षण के जो केंद्र हैं उसके बारे में, जैसे कि एक तो यहाँ का स्वर्ण कलश जो है वो बहुत ही सुंदर है, साथ ही गब्बर लाइट एंड साउंड शो, गब्बर पहाड़ी पर शाम के समय होने वाला प्रकाश और ध्वनि प्रदर्शन, ये देखने लायक होता है। तो आप भी ज़रूर जाएं और दर्शन करें इस माँ के दरबार का।

0: तो रश्मि, तो ये कार्यक्रम यूं ही आगे भी जारी रहेगा 9:10, पर फिलहाल सवेरे के 9 बजने को है, तो ये वक्त है हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: जी।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राज्य में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध, आम जन को घबराने की आवश्यकता नहीं। और प्रदेश में आज पहली बार गोडावण दिवस मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली दौरा पूरा कर नई दिल्ली लौट आए हैं। भारत और इटली ने कल अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की। दोनों देशों ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, समुद्री परिवहन और बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने टैक्स से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस बयान में कहा कि भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक व्यावहारिक और भविष्योन्मुखी

0: रोड मैप देगी।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। ये बैठक 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं और फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबैट सामग्री और अपुष्ट जानकारी फैलाते हैं। इससे छात्रों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के ठुम्बड़ गांव में सुबह भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई, जिनमें पानी की समस्या सबसे ज्यादा थी। इस पर मुख्यमंत्री ने एनिकट, हैंडपंप और तालाब बनाने सहित कई कार्य स्वीकृत किए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार गांवों की मजबूती के लिए काम कर रही है। पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार संकल्पित है।
2: हम रोजगार सृजन करने का काम हमारी पंचायत में कैसे कर सकते हैं, हमारे उस क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं? हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम नई तकनीकी से कैसे खेती कर सकते हैं, कम पानी में कैसे अच्छी खेती कर सकते हैं, कौन सी खेती लाभदायक है जिसको हम कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की कहाँ आवश्यकता है जिसको हमारी खेती होती है, उसको कोल्ड चेन से कैसे जोड़ा जाए, सुगमता से किसान का माल मंडी में कैसे आए, पशुपालन को जोड़ते हुए डेयरी का लाभ कैसे हमारे किसानों को मिले, उसका उत्पादन कैसे बढ़े, किसान और हमारे माता बहने, हमारे मजदूर आर्थिक रूप से संबल कैसे हो, और ये जब संभव है जब हम गांव की छोटी छोटी बातों को, गांव के लोगों को मोटिवेशन करते हुए उस गांव को हम मजबूत बनाएं।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने किसानों और पशुपालकों से संवाद किया। श्री शर्मा ने किसानों से प्राकृतिक खेती और उन्नत तकनीक को अपनाकर आर्थिक रूप से मजबूत होने की बात कही। मुख्यमंत्री आज शाम डूंगरपुर पहुंचेंगे। वे वहां कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 84 विधानसभा क्षेत्र की तंबोला ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल में शामिल होंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे जालौर रेलवे स्टेशन से भुज, दिल्ली वाया भीलड़ी, जालौर, पाली, मारवाड़ जंक्शन एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इस रेल सेवा के जरिए जालौर पहली बार राजधानी दिल्ली से सीधा जुड़ेगा। ये ट्रेन अंजार, गांधीधाम, भचाऊ, भीलड़ी, धनेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़, भीनवाल, मोदरान, जालौर, मोकलसर, समदड़ी, लूनी, पाली, मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर जंक्शन, जयपुर गांधीनगर स्टेशन, बांदीकुई, अलवर और रेवाड़ी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ये ट्रेन कल उद्घाटन स्पेशल के रूप में चलाई जाएगी। इसके बाद इसे नियमित कर दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। आमजन को किसी भी प्रकार की घबराहट में आकर अनावश्यक खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। कल राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पर मुख्य सचिव ने जयपुर सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान देश की प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क प्रणाली से जुड़ा हुआ है, के माध्यम से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की नियमित आपूर्ति लगातार जारी है।

0: केंद्र सरकार ने भी प्रदेश को आश्वस्त किया है कि भविष्य में भी आपूर्ति में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि अधिवक्ता केवल न्यायालय में पैरवी करने वाले व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की सशक्त आधारशिला है। उन्होंने कहा कि समाज में न्याय की स्थापना, आमजन के अधिकारों की रक्षा और संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल पावटा में न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ कार्यालय के लोकार्पण और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने कहा कि एक सफल अधिवक्ता वही है जो अपने मुवक्किल के विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का हम सभी को पालन करना है, बचत करना हमारी परंपरा भी रही है।
1: मोदी जी का आह्वान आम जन के लिए है, जनता में इसका बहुत फायदा मिल रहा है, इसलिए हमारा भारतवासियों का आने वाला भविष्य सुरक्षित है अपेक्षा अन्य देशों की। बड़े बड़े देशों में तेल के भाव, गैस की सप्लाई, उसके बने से हम बहुत सुरक्षित रहते हैं। और मेरा सबसे अनुरोध है, हम सब मिलकर के हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी के आह्वान की पालना करें तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा और थोड़े दिन बाद में जो घटनाक्रम है निपट जाएगा, उन्हें सामान्य स्थिति।
0: राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण को समर्पित गोडावण दिवस आज प्रदेश में पहली बार मनाया जा रहा है। इसे लेकर जैसलमेर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा आज डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। इस दौरान गोडावण प्रतिमाओं का अनावरण किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि गोडावण संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयास रंग ला रहे हैं।
2: गोडावण दिवस को लेकर स्वर्ण नगरी में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा गोडाउन संरक्षण को लेकर चल रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस दौरान गोडाउन प्रतिमाओं का अनावरण भी किया जाएगा। वहीं आज जैसलमेर शहर के उत्कृष्ट जैन भवन में गोडाउन दिवस समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। गौरतलब है कि गोडाउन के संरक्षण के लिए जैसलमेर के रामदेरा व सुदासरी में विशेष ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां AI तकनीक से इनकी आबादी बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य पक्षी के सुरक्षित आवागमन के लिए रामदेरा में एक विशेष टनल का निर्माण भी करवाया जा रहा है। मनीष व्यास, गोडाउन दिवस को लेकर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राज्य में पेट्रोल डीजल और LPG का पर्याप्त भंडार उपलब्ध, आमजन को घबराने की आवश्यकता नहीं। और प्रदेश में आज पहली बार गोडावण दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने एक बार फिर से ट्यून किया है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। 9:10 हो रहे हैं रश्मित, और अब क्यों ना एक खूबसूरत सा गीत हो जाए।
4: बिल्कुल।

0: भाई पल पल कैसे कटेगा, हर पल, हर पल हमारा तो बहुत ही अच्छा कटता है क्योंकि हम होते हैं आकाशवाणी के साथ।
1: बिल्कुल, और जहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ हैं और आज हम स्पेशली एक कहानी लेकर आए हैं।
0: बिल्कुल, और ये कहानी हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर विमला भंडारी द्वारा, और कहानी का शीर्षक है तुम सच्ची बाकी सब झूठे। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर विमला भंडारी द्वारा ये कहानी।
2: सब झूठे तुम सच्ची। सुबह से ही वसुधा काम में लगी हुई थी। रसोई की खिड़की से आती हल्की धूप फर्श पर फैल रही थी। गैस पर चाय चढ़ी थी, सिंक में रखे बर्तन धुल चुके थे और अब वे दोपहर के खाने की तैयारी में जुटी थी। इतने वर्षों से घर गृहस्थी संभालते संभालते उसके हाथ मशीन की तरह चलते थे, पर मन अब भी कहीं न कहीं थक जाता था। उधर घड़ी ने 10:30 बजाए और इधर मोबाइल की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर बेटी का नाम चमका तो उसके चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई। हाँ बोलो मेरी राजकुमारी, वसुधा लाड़ लड़ाते हुए बोली। उधर से तुरंत आवाज आई, माँ आप भी फोन करने वाली थी क्या? मैंने सोचा मैं ही पहले कर लूँ। वसुधा हल्का सा हंस पड़ी। कितनी बार कहा है इस समय फोन मत किया कर, तेरे पापा को खाना खिलाने का समय होता है। जानती हूँ माँ, बेटी ने ठुनकते हुए कहा, पर मेरे पास भी यही एक समय होता है। सुबह के सारे काम निपटा कर जब बैठती हूँ ना, तब आपकी बहुत याद आती है। वसुधा का मन भीग गया। शादी के बाद बेटी दूसरे शहर चली गई थी, पर उसकी आदतें अब भी बचपन जैसी ही थी। वे कुछ कहती इससे पहले बेटी की आवाज़ फोन पर चहक उठी। अरे माँ, आज सुबह मैं साइकिलिंग के लिए नीचे जा रही थी ना, तब सामने वाले फ्लैट की आंटी मिल गई। कौन? विरल की माँ, कल्पना जी? हाँ माँ, उनकी हालत देखकर बहुत बुरा लगा। कल शाम उनकी सासू माँ बा पार्क में गिर गई थी। वसुधा का हाथ थम गया। उसने पूछा, अरे फिर क्या हुआ? बेटी अब पूरी तल्लीनता से बताने लगी। हर रोज की तरह बार शाम को पार्क में जाकर बैठी थी, धीरे धीरे चलती थी ना, अब शायद उठते समय संतुलन बिगड़ गया और वहीं गिर पड़ी। सोसाइटी वालों ने आंटी को फोन किया। आंटी दौड़ती हुई नीचे आई, फिर लोगों की मदद से किसी तरह बा को ऊपर ले गई। बेचारा अकेला इंसान क्या क्या करे। उन दिनों वसुधा बेटी के पास उसके प्रसव हेतु गई हुई थी। इन 2 महीने में कल्पना जी से अच्छी दोस्ती हो गई थी। वसुधा के सामने अतीत जीवंत हो उठा। दुबली पतली कल्पना आंटी माथे पर पसीना एक हाथ से सास को संभालती हुई। वसुधा की आंखों में आंटी के हाथ में पहनी सोने की चूड़ियां चमक उठी।

इसकी नक्काशी से आकर्षित होकर उनसे पहली बातचीत आरंभ हुई थी। फिर जब भी आमने सामने होते वे आपस में बातें करने लगी थीं, एक दूसरे के हालचाल पूछने लगे। धीरे धीरे परिचय में अपनत्व बढ़ता गया था। शाम को उनके साथ अक्सर सोसाइटी के पार्क में घूमने निकल जाती थी। घूमने के साथ खूब बातचीत भी होती और कभी बेंच पर बैठकर पुराने गाने भी गा लिए जाते थे। प्रगाढ़ता बढ़ी तो दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता बन गया। वे उन्हें कल्पना जी कहकर बुलाने लगी। कल्पना जी को याद करते हुए वसुधा ने फोन का स्पीकर ऑन किया और रसोई में जाकर गैस चलाकर तवा चढ़ा दिया। अब कैसी हैं बा, वसुधा ने रोटी बेलते हुए पूछा। कमजोर तो बहुत हो गई है माँ, पर हिम्मत अभी भी है उनमें। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, लेकिन शाम होते ही कहती हैं थोड़ी देर नीचे बैठा हूं तो मन लग जाता है। कुछ क्षण दोनों चुप रही। वसुधा को बरसों पुरानी ये बातें याद आने लगी। कल्पना जी के दोनों बच्चे विरल और पारुल पढ़ने में तेज थे, पति अच्छी नौकरी पर थे, घर हमेशा जगमगाता रहता जैसे कोई उत्सव हो। आने जाने वालों की रेलम पेल से घर हंसता मुस्कुराता रहता। फिर धीरे धीरे सब बदलता चला गया। वसुधा ने पति की थाली लगाई और कमरे की ओर आवाज लगाई, अजी खाना लगा दिया है। इधर फोन पर बेटी फिर बोलने लगी, माँ सच बताऊं तो मुझे आंटी के लिए बहुत दुख होता है। अंकल तो वर्षों से डिप्रेशन के मरीज हैं, दवाइयों के बिना रह ही नहीं सकते। कभी दवा छूट जाए तो घर में अजीब व्यवहार करने लगते हैं। हाँ, वसुधा ने लंबी सांस ली, बहुत सहा है उस औरत ने, और ऊपर से अब बाकी जिम्मेदारी। माँ अकेले इंसान की भी कोई सीमा होती है। रोटी पलटते पलटते वसुधा जैसे अतीत में खो गई। उसे याद आया जब विरल इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था तब फीस भरने के लिए कल्पना जी ने हाथों की उस सोने की चूड़ियों को छोड़ बाकी सब गहने बेच दिए थे। पारुल भी तब नौकरी करती थी, भाई की पढ़ाई में उसने तन मन से साथ दिया था। सबका कितना प्यार था, प्यारा था विरल, वसुधा धीरे से बोली। हाँ माँ, बेटी ने कहा, विरल भी मेहनती था, हमेशा कहता था कि अमेरिका जाकर बड़ा आदमी बनेगा, सबने उसका सपना अपना सपना बना लिया था। पारुल तो हर महीने अपनी तनख्वाह से पैसे बचाकर भाई की मदद करती थी। फिर विरल की शादी भी तो जल्दी कर दी थी। हाँ, अमेरिका जाने से पहले अच्छी लड़की देखकर शादी करवा दी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बेटी अचानक रुक गई। लेकिन क्या? पता नहीं माँ, शादी के बाद न जाने क्या हुआ, शायद लेन देन को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई थी, बस तभी से उनकी बेटी पारुल बदल गई। पहले हर हफ्ता माँ बाप से मिलने आ जाती थी, सारे काम बेटे की तरह संभाल लेती थी, पर अब महीनों निकल जाते हैं, आती ही नहीं। वसुधा का मन कसीला हो उठा। अपने माँ बाप से इतनी नाराजगी भी ठीक नहीं। सच माँ, इस कठिन समय में भी नहीं आती, कभी कभार फोन कर लेती है बस। उधर तवे पर रोटी फूल रही थी और इधर दोनों के मन में रिश्तों की बुझती गर्माहट का धुआं भर रहा था। कुछ देर बाद बेटी फिर बोली, माँ मुझे तो कभी कभी लगता है रिश्ते अब बस नाम मात्र के रह गए हैं, सब अपने अपने मतलब में लगे हैं। वसुधा चुप रही। बेटी का स्वर भर्रा गया। उसने तलखी से पूछा, विरल विदेश में बैठा है, फोन करके हालचाल पूछ लेना ही क्या जिम्मेदारी पूरी करना है? और पारुल, जिसके बिना घर का एक काम नहीं होता था, वही अब ऐसे दूर हो गई जैसे उसका कभी इस घर से रिश्ता ही ना रहा हो। खून के रिश्ते ऐसे बेमानी कैसे हो जाते हैं माँ, वसुधा ने धीरे से कहा। हर रिश्ते की अपनी पीड़ा होती है बिटिया, बाहर से सब कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन कल्पना आंटी, बेटी लगभग भावुक हो उठी, वे तो पूरी सच्चाई से सारे रिश्ते निभा रहे हैं, पति सास बेटा बहू सबके लिए लगी हुई हैं, कभी शिकायत तक नहीं करती। वसुधा के हाथ रुक गए। उसे याद आया पिछली बार जब कल्पना से मुलाकात हुई थी तो चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, फिर भी मुस्कुराकर बोली थी वे, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। वसुधा को उसकी मुस्कान के पीछे छिपा दर्द गहराई से महसूस हुआ था। उधर बेटी बोल रही थी, आप लोगों की पीढ़ी ने रिश्तों को बहुत ईमानदारी से निभाया माँ,
आज की पीढ़ी

0: शायद जल्दी थक जाती है या शायद रिश्तों का अर्थ बदल गया है, अब रिश्ते शायद लेन देन पर आधारित हो गए हैं। वसुधा कुछ कह पाती उससे पहले मोबाइल पर दूसरी कॉल आने लगी। उसने स्क्रीन देखी, बिटिया जरूरी फोन आ रहा है, बाद में बात करती हूँ। ठीक है माँ। फोन कट गया। रसोई में अचानक सन्नाटा भर गया। पति काम पर जा चुके थे। वसुधा धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। सामने तवे पर आखिरी रोटी पड़ी थी जो अब हल्की जलने लगी थी। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, सब झूठे तुम सच्ची। क्या सचमुच रिश्ते बदल गए हैं या लोग परिस्थितियों से हार जाते हैं? वे सोचने लगी, क्या पारुल भी भीतर से टूटी होगी या फिर उसे लगा हो कि भाई के लिए सबने उसे नज़रअंदाज कर दिया? शायद उसके मन में कोई गांठ है जो समय पर खुल नहीं पाई। और विरल, विदेश की चमक में क्या सचमुच अपने पीछे छूटते लोगों की थकान दिखाई देती होगी उसे? पर इन सब के बीच कल्पना जी एक दीपक की तरह थी जिसकी लौ धीरे धीरे जलती है पर बुझती नहीं। वसुधा की आंखें नम हो उठी। उसे लगा दुनिया में सब कुछ झूठा हो सकता है, लेकिन कुछ लोग सचमुच रिश्तों को अपने हिस्से की आखिरी सांसों तक सच्चाई से निभाते हैं।
1: तुम सच्ची, बाकी सब झूठे। इस विषय पर अभी आपने सुनी ये कहानी डॉक्टर विमला भंडारी द्वारा। तो रश्मित, ये है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर।
2: बिल्कुल, और आज के हमारे चंक में होता है पर्यावरण संवाद, जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं RRR की। भाई ये बॉलीवुड फिल्म नहीं है RRR, हमारे श्रोताओं को बता दें। आज हम बात करने वाले हैं रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल की।
1: बिल्कुल, इको टॉक, जहाँ हम 3R की अवधारणा को समझेंगे। और यह कचरा प्रबंधन है और पर्यावरण संरक्षण का एक मूलभूत सिद्धांत है। और इस अवधारणा का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण को कम करना और कचरे को बढ़ने से रोकना है।
2: बिल्कुल, देखिए रिड्यूस का मतलब होता है ऐसी वस्तुओं को कम उपयोग करना जिससे कचरा और प्रदूषण घटे, आवश्यकता अनुसार ही सामान खरीदना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और बिजली और पानी की बचत करना। रीयूज का मतलब हुआ किसी वस्तु को फेंकने की बजाय दोबारा उसे उपयोग में लाना। कपड़े के थैले बार बार इस्तेमाल कीजिए, पुरानी बोतलों और डिब्बों का उपयोग कीजिए और किताबें और खिलौने दूसरों को दे दीजिए।
1: बिल्कुल, और तीसरा रिसाइकल, जिस भी चीज का उपयोग संभव ना हो तो उसे किसी प्रक्रिया के माध्यम से नए उत्पादों में बदलें, जैसे कि प्लास्टिक अखबार जिसे हम नए कागज में यूज में ले सकते हैं और प्लास्टिक से नई वस्तुएं बना सकते हैं। कचरा जो कि अलग अलग डिब्बों में हमें डालना चाहिए, इसे समझना बहुत जरूरी है। अपने क्षेत्र के पुनर्चक्रण का पालन करें। रिसाइकलिंग से पहले सुनिश्चित करें कि आपका कचरा साफ हो। खाने के कचरे के लिए कंपोस्ट बिन का इस्तेमाल करें। पुनः उपयोग योग्य पेय की जो बोतलें होती हैं और कप होती हैं उन्हें यूज में लें। भंडारण के लिए कांच के जारों का उपयोग करें। खरीदारी करते समय अपने साथ दोबारा इस्तेमाल होने वाले बैग लेके जाएं, जैसे कि कपड़े के थैले होते हैं।
2: बिल्कुल, देखिए, और जहां तक हम अवेयरनेस की ही बात कर रहे हैं कामिनी, तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में वित्तीय जागरूकता की बात, क्योंकि इसमें उन्हें कम उम्र में ही पैसे की महत्ता, बचत और खर्च और सही आर्थिक निर्णयों की समझ देना बहुत जरूरी है। और आजकल के डिजिटल युग में भी ये समझदारी होनी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल रश्मि, तो वित्तीय साक्षरता हर उम्र में महत्वपूर्ण होती है और इसकी शुरुआत अगर हम बच्चों में बचपन से कर दें तो बच्चों को बचत, खर्च, बजट बनाने और जिम्मेदार निर्णय लेने के बारे में समझने और भविष्य में उनकी वित्तीय आदतें भी मजबूत हो सकेंगी।
2: बिल्कुल, देखिए, बच्चों को सिखाया जा सकता है कि बचत कैसे की जाती है। आप गुल्लक या सेविंग बॉक्स को यूज कर सकते हैं। जरूरत और इच्छा में उनको डिफरेंस बताना जरूरी है कि क्या चीज आपको जरूरी है और क्या आपकी इच्छा है। इसी के अनुसार बजट बनाइए, डिजिटल भुगतान की समझ दीजिए और साथ ही मेहनत और पैसे का संबंध भी उन्हें बताना बहुत जरूरी है।
1: तो रश्मि, ये था आज का हमारा नमस्कार उदयपुर, और कार्यक्रम से हम इजाजत लेंगे पर इसी वादे और इसी गीत के साथ कि फिर हम जरूर मिलेंगे। तो आज के कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त कामिनी
2: और मैं थी रश्मि। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार उदयपुर, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 9:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, प्रायोजक NCERT।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
3: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग एनसीईआरटी सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
3: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
3: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश, कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपर

0: कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: और ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
1: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की
1: जी।
0: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं
1: जी।
0: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट
1: जी।
0: तो शुरू करें?
1: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत
0: जी।
1: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी
0: जी। श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है
1: जी।
0: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है
1: जी। हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है
0: जी। शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
1: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
0: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
1: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
0: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता
1: जी।
0: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं
1: जी।
0: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
1: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
0: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
1: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
0: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओं, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
1: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
0: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
1: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृवृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
0: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी।

0: पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया, चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की, लेकिन

0: संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
1: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।
2: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
3: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो, कान लगा कर सुनो सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते

0: एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ता ता थैया।

0: मोर ताता थैया नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
0: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
0: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
4: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
5: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
6: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
7: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी।
6: हाँ।
7: फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
6: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
7: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
6: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़, इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
7: बिल्कुल सही कहा अटकू, इसे काटो।
8: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
7: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल
6: चल।
5: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
9: रुको रुको रुको रुको, काटो मत मुझे, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
6: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
7: हाँ अटकू चल आगे चलते हैं।
5: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
7: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
6: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है।

0: वो भी कटहल से लदा हुआ।
1: वो उसे काटने लगे।
2: काटो मत मुझे, काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें, तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
3: अच्छा ठीक है,
4: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
1: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
5: क्या मिलेगा काट कर मुझे? अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ न होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें?
4: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
1: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
6: अरे वाह अटकू मटकू,
1: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
3: पेड़ हमारे
4: दोस्त हैं।
3: जीवन में हरियाली लाओ,
4: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
7: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।
9: उमंग उमंग उमंग उमंग,
8: उमंग, उमंग। ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आपने सुना। प्रायोजक NCERT, आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के ठीक 10 बज रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको शीर्षक पर आधारित गीत सुनवाएंगे। तो आज का हमारा शीर्षक जानिए इस गीत से।

भाई चांद से सिफारिश तो हो गई, पर चांद से तो हर किसी को प्यार होता है, और मैं खुश नसीब हूँ कि चांद को मुझसे प्यार है और चांद मेरा दिल है।

हम किसी से कम नहीं, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, आवाज मोहम्मद रफी की, चांद इस शीर्षक पर आज शीर्षक गीत फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम चल रहा है। रोज रातों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरों में निकल पड़ता है। तो ये तो अंधेरों की बात है, पर कभी कभी बादलों में जाकर भी ये चांद छुप जाता है।

छुप गया बदली में जाकर, चांद भी शर्मा गया। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा नगमा। फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम शीर्षक पद आधारित। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

तो फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम शीर्षक गीत में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त कामिनी। तो आइए चांद सितारों की बातें करें। मेरा और चांद का मुकद्दर एक जैसा है, मैं हजारों में अकेला, वह तारों में अकेला।

कहो ना प्यारे, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। बेसबब मुस्कुरा रहा है चांद, कोई साजिश छुपा रहा है चांद, और क्या छुपा रहा है चांद, चांद खुद भी छुप रहा है बादलों में।

चांद छुपा बादल में। जी हाँ, हम दिल दे चुके सनम, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। वो चांद कह के गया कि आज निकलेगा, तो इंतजार में मैं बैठा शाम से हूँ। शाम से बैठा हूँ और इंतजार है चांद सी महबूबा का ही।

तो चांद की बातें चल रही है और शीर्षक हमारा है आज चांद। तो चांद सी महबूबा जब मिली तो चांद ने पर्दा कराना भी सिखा दिया।

चांद से पर्दा कीजिए, कुमार सानू की आवाज़ में आओ प्यार करें इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में दिल ही दिल में इस फिल्म का ये गीत। न चाहकर भी मेरे लब पर ये फरियाद आ ही जाती है, ए चांद सामने न आ, किसी की याद आ ही जाती है। और चांद शीर्षक पर आधारित आज का ये शीर्षक गीत फिल्म संगीत का कार्यक्रम इस गीत के साथ ही बस। मैं थी आपके साथ आपकी रिद्ध दोस्त कामिनी।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
5: रुक जा बुड्ढू।
6: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
4: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
7: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
6: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
8: कूल रहो।
9: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम शीर्षक गीत। फिल्म संगीत के अंतर्गत हमने आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाया। सुबह के 11 बज चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं राग ललित। सुबह के समय गाए जाने वाली ये बहुत ही अच्छी राग है और इसको सुनने से मन और रूह दोनों प्रसन्न हो जाती हैं। तो एक मन को सुकून देने वाला संगीत जो होता है शास्त्रीय संगीत, उसके अंतर्गत राग ललित हम आप तक पहुंचा रहे हैं।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, अभी हमने आप तक पहुंचाया शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आपने सुनी राग ललित और इसी आवाज़ दी थी एम वेंकटेश कुमार ने। सुबह के 11:30 हो चुके हैं, आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त संगीता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

सुगम संगीत ऐसा संगीत जो दिल तक पहुंचे, जिसके हर लफ्ज पे हर बात पे हमें अपने मन से कहीं ना कहीं कनेक्शन फील हो, ऐसा संगीत होता है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचा रहे हैं सबसे पहले गजल आशा भोसले की आवाज़ में।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: अरे पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: दादी कौन सा प्लांट है?
5: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
6: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
4: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
6: क्यों?
4: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
6: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
7: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
8: श्रोताओं, सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आपकी दोस्त संगीता के संग। कार्यक्रम की अगली गजल पेश है आपके लिए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में।

0: रहा है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं दोपहर के 12 बजने को है, आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

संगीता के संग। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में, इस सेगमेंट में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे ऐसे नगमे हैं जो कालजयी नगमे हैं, मतलब कि समय की किसी भी सीमा से परे। ऐसी आवाज़ें, चाहे वो किशोर जी की हो, लता जी की हो, मोहम्मद रफ़ी की हो, या और भी सभी प्यारे से आर्टिस्ट की हो, वो हमारे दिलों में इस तरह बस गई हैं कि कभी भी कहीं भी ये नगमे अगर बजते हैं तो हमारे रूह में उतर जाते हैं और अनजाने ही हम इनके साथ गुनगुनाने लगते हैं। तो ऐसे ही प्यारे से नगमे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म जूली से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ है।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आपकी दोस्त संगीता के संग आकाशवाणी उदयपुर। आपने ट्यून किया है। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। ये ऐप आप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ट्यून करना पड़ेगा मीडियम वेव चैनल 1125 किलोहर्ट्ज़ पर और 286.66 मीटर पर। और हम कभी भी कहीं भी आपके मोबाइल फ़ोन पे के ज़रिए आप तक पहुंच सकते हैं और आप सुन सकते हैं आकाशवाणी उदयपुर के सारे कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मेरे जीवन साथी फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में।

श्रोताओं, आप जुड़े हैं आकाशवाणी उदयपुर से और मैं हूं आपकी दोस्त संगीता। फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्यक्रम में अभी आपने सुना मेरी जीवन साथी से ये हम किसी से कम नहीं का ये गीत आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी ने। और अब हम कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं कुछ नए फिल्मी गीत। ओम शांति ओम से ये गाना आपके लिए सोनू निगम की आवाज़ है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म तेरे नाम से ये दो गाना, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ें थी, हिमेश रेशमिया का संगीत था। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म जोधा अकबर से जावेद अली की आवाज़ में।

0: सुन, फते फते आप पुराने नोट को
1: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
0: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
1: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: दी, ये देख कैसे?
5: हैप्पी बर्थडे भाई।
4: दीका,
6: हाँ मेरा फेवरेट कलर
5: हमेशा शॉपिंग।
7: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
8: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
9: I know ba, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
7: I know na.
9: RBI कहता है,
10: करो सही शुरुआत, बनो financially smart।
11: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। कार्यक्रम का अगला गीत दम लगा की हई श्या मूवी से है और इसे गाया है मनाली ठाकुर एंड पेपोन ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम अब तक पहुंचा रहे हैं और आप जुड़े हैं आकाशवाणी उदयपुर से। कार्यक्रम का अंतिम गीत हम अब तक पहुंचा रहे हैं, श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज़ें हैं और पीके फिल्म का ये गीत है। इसी गीत के साथ संगीता को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कुछ इन पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। तुमसे मिलकर यह एहसास हुआ कि सच्ची मोहब्बत अब भी होती है। न चाँद चाहिए न सितारे चाहिए, मुझे सिर्फ हर जन्म में तेरा साथ चाहिए। ऐसी ही प्यारी सी बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और देश और दुनिया में बहुत कुछ अलग हो रहा है, लेकिन सबसे ज़रूरी जिस बात से हमने शुरुआत करी थी कि मन की शांति और सुकून अपने आसपास के वातावरण को भी पॉजिटिव बनाता है, तो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और सुकून और शांति से ये अगला गीत सुनिए फिल्म पीके से।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी उदयपुर से। श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म संगीत का कार्यक्रम और अब सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। दिन का 1 बजने वाला है। थोड़ी ही देर में आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के चुड़ादा गांव में सुबह भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मॉर्निंग वॉक के बाद मुख्यमंत्री बांसवाड़ा सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को आगे बढ़ाते हुए आम जनता से पेट्रोल डीजल बचाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की। सर्किट हाउस पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री का आज कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद वे डूंगरपुर के लिए रवाना होंगे। श्री शर्मा वहां भी कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 84 विधानसभा क्षेत्र की तंबोला ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल में शामिल होंगे। कल मुख्यमंत्री इसी गांव में प्रातःकालीन भ्रमण करेंगे। देशभर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की प्रवृत्ति से दूर रखना है। इसी दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इधर पाली के राजीव गांधी स्मृति भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया और 2 मिनट का मौन रखकर पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण को समर्पित गोडावण दिवस आज प्रदेश में पहली बार

0: मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जैसलमेर में राज्य पक्षी गोडावण की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी सहित वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वन मंत्री ने डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का भ्रमण कर गोडावण संरक्षण के लिए चल रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा भी की। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने सरस दूध और दूध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें आज शाम से लागू होंगी। डेयरी दूध के दाम में प्रति लीटर 2 रुपए की वृद्धि की है। दूध के साथ दही, छाछ, लस्सी और पनीर की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। 200 ग्राम पनीर का पैकेट अब 74 रुपए की बजाय 80 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा 200 ग्राम दही का पैक अब 16 रुपए की जगह 18 रुपए में मिलेगा। सादा छाछ पर 1 रुपए और नमकीन छाछ और लस्सी पर 2-2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले 13 मई को अमूल और मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की थी। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अभी इससे कोई राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। विभाग ने आगामी 3 से 4 दिन तक प्रदेश के आधे से अधिक हिस्सों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर और कोटा संभाग के अधिकांश जिलों में गर्म हवाओं का असर बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य के 7 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा, जबकि 8 शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड किया गया। श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं बीकानेर की रात सबसे गर्म रही, वहां न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह जारी की है। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक VK सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी अब गूगल जेमिनी, ChatGPT और ग्रोक जैसी AI तकनीकों का उपयोग कर आधार बायोमेट्रिक सुरक्षा प्रणालियों को बायपास करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से अपने आधार बायोमेट्रिक्स को एम आधार ऐप या UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लॉक करने की अपील की है। बायोमेट्रिक्स लॉक होने पर फिंगरप्रिंट और आइरिस डेटा का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक स्वयं उपयोगकर्ता उसे अनलॉक ना करे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, दोपहर 1:05 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम सहेलियारी बाड़ी।

0: सरजू भैसा राम राम
1: राम राम ममता भैसा राम राम
0: और सहेलियारी बाड़ी कार्यक्रम सुनवा वाली सगली सहेलिया ने आपनो
2: राम राम सा।
0: देखो सरजू भैसा कार्यक्रम रो टेम भी और आपा सहेलिया रे बातें भांत भांतरी जानकारी लेने आया हाँ सा,
1: हाँ सा।
0: और देखो सहेलिया ने आपा अपने कार्यक्रम रे माध्यम नरी हरी जानकारी करावा वणी में आपने देखो आज आपा विचार वाली बात में अपने सहेलिया रे बातें लाया हाँ कि महिला वित्तीय स्वतंत्रता में आत्मनिर्भर किस तरह बने सा।
1: बिल्कुल सा, हाँ बिल्कुल बहुत ही बढ़िया हाँची बात कह रहा हो सा। देखो अणीरे महीने यदि एक महिला जो है वह अपने पगारे ऊपरे खड़ी वेवे है तो सिर्फ एक व्यक्ति और आत्मनिर्भर ही नहीं वेवे बल्कि पूरो परिवार पूरो समाज पूरो देश जो है वो भी वणी महिला रे लारे लारे मजबूत वेवे है सा। तो अणीरे महीने आप वित्तीय स्वतंत्रता की बात करा ममता भाई सा,
0: हाँ
1: सा? तो अणीरो मतलब यो ही से कि सिर्फ देखो पैसों कमावनो ही नहीं अन्य अलावा अन्नो असली मतलब है कि आपने फैसला री आजादी आपना कमाया तक का जितना भी पैसा है वणा ने कटे खर्च करना है वणा ने कटे वणा नो बचाव करना।

0: है और कटे वड़ा ने निवेश करना है। तो अणीरो निर्णय लेवा रे जो खुदरो हक वेवे वो वित्तीय स्वतंत्रता कहलावे सा।
1: बिल्कुल बढ़िया बात की थी सरजू भाई सा। और अणी में आप बात करा कि अगर एक महिला आत्मनिर्भर वेगा व वित्तीय रूप स्वतंत्र वेगा तो वनो जो आत्मविश्वास है वो दोगुनो वे जाएगा, वन्य आत्मविश्वास में बढ़ोतरी वेगा। यदि आपने हाथ में खुदरो कमाए थको पैसो वेवे और हर महिला रो हौसलो और समाज में वनो सम्मान दोगुनो वे जा। और अणियों कई वे कि आवा महिला वे वन्य सुरक्षा रो एहसास वे। जीवन में कहीं भी आपातकालीन जा स्थिति है जैसे बीमारी है या संकट है नो सामनो करार वाते कणी पे भी वने निर्भर नहीं रहनो पड़े सा।
0: बिल्कुल हाची बात कह रहा हो सा। देखो जटे निर्भरता री बात आवे तो देखो आणी रे महीने है कि स्वयं सहायता समूह जा है पहली सीढ़ी निर्भरता री। तो आणी रे महीने आपाने जो ग्रामीण इलाका में जत्री भी महिला है ममता भैसा, तो वणा रे आर्थिक रूप वणा ने सशक्त बनावा रे वास्ते स्वयं सहायता समूह ने एक क्रांति लई दी है कि एक अकेली लड़की आसानी टूटी सके है। तो लेकिन जदि कई लड़कियां एक लारे, देखो एक एकली लड़की जो वे

0: पहली सीढ़ी निर्भरता रही। तो अणी रे महीने आपाने जो ग्रामीण इलाका में जितनी भी महिला है ममता भैसा,
1: हाँ सर,
0: तो वनारे आर्थिक रूप वनाने सशक्त बनावारे वास्ते स्वयं सहायता समूह ने एक क्रांति लाई दी है कि एक अकेली लड़की आसानी टूटी सके है। तो लेकिन जदि कई लड़कियां एक लारे, देखो एक एकली लड़की जो वे तो आपा केवा कि अणीरे महीने देखो एक लकड़ी है, तो अणीरे महीने कतरी बार आपा देखा कि एकजुट वही अगर लकड़ियां रेवे तो वणी लकड़ियां ने कोई तोड़ नहीं सके। वणी तरीको एक अकेली लड़की जो है,
1: हाँ,
0: अकेली रहेगा तो वने हर कोई तोड़ेगा, और एकजुट महीने रहेगा तो वने कोई नहीं तोड़ सकेगा। तो अणी तरीको वह लकड़ी जो है आसानी टूटी जावे है, लेकिन यदि कई हरी लकड़ियां एक हाथे बंडल में बंधी जावे तो वनो तोड़नो नामुमकिन वे जावे। तो यह ताकत है एक स्वयं सहायता समूह री। तो लकड़ी रो उदाहरण अणी वास्ते इस दीदो है ताकि समाज में जितनी भी लड़कियां है वना ने अणी चीज रो आभास वे जावे कि स्वयं सहायता समूह एक अपने आप में बहुत बड़ो समूह है जो हर नारी रे वास्ते बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सा। और देखो स्वयं सहायता समूह जो है आत्मनिर्भरता री पहली सीढ़ी है। अणी में आपा देखा बचत री एक आदत वे, हर महीने छोटी छोटी बचत करीने महिला एक बड़ो फंड तैयार कर सके, जणी वे आसान ऋण लोन और साहूकारा जो महंगा ब्याज है वने जालू वना ने मुक्ति मिल सके। बैंक और समूह बहुत ही कम ब्याज आपा देखा ब्याज पे खेती पशुपालन या पाछे छोटो जो बिजनेस है वन्ने वाते लोन देवे है सा। और अने में सामूहिक शक्ति की बात करा तो महिला मिलीने पापड़ अचार मोमबत्ती साबुन हस्तशिल्प जे उद्योग है जैसे सिलाई कढ़ाई ये काम शुरू कर सके सा।
0: बिल्कुल सा। जटे आपा स्वरोजगार और नया अवसर की बात करा ममता भैसा, और अपनी जतरी भी ग्रामीण बहना है वना ने बतावा कि आज री जो महिला है वे सिर्फ घर रा चूल्हा चाका तक की सीमित नहीं है, वित्तीय स्वतंत्रता रे वास्ते वे कई तरीका रा क्षेत्र में हाथ आजमाई रही है। जणी में आपा देखी सका, देखो आधुनिक खेती और पशुपालन री बात करा तो महिला जो है सिर्फ खेता में मजदूरी ही नहीं करी रही है, बल्कि उन्नत बीज वैज्ञानिक तरीका फसला रो प्रबंधन और आधुनिक कृषि यंत्र जो है वनारो उपयोग भी सीख गई है। और लारे लारे डेयरी जो फार्मिंग वाला काम है वणी रे महीने उन्नत नस्ल री गाय भैंस पालन ये सब आवे है, तो अणी में वे बकरी पालन भी करी रही है। और अणी रे जरिए ग्रामीण महिला जो है हर महीना एक बंदी बंदाई आय कमाई रही है। तो वणी कई दूध री स्वच्छता सही विपणन और सीखी ने वे पूरो हव तरीका मुनाफो जुड़ी सके, जणियों वे वनारी अर्थव्यवस्था और वनारो घर रो जो आर्थिक बजट है वणी में भी सुधार वे और महिला री जो घर री स्थिति है वणी में बराबर तरीका सुधार वे रो और वनारे आय में भी वृद्धि वे रही है।
1: बिल्कुल सा। लारे लारे गृह उद्योग और लघु व्यवसाय री बात करा तो मोमबत्ती और साबुन वनानो है, यो कम लागत में घर शुरू वे वालो एक बेहतरीन व्यवसाय है जनी स्थानीय बाजार में मांग वणी थकी रहे। लारे लारे अनाज और मसाला पिसाई रो काम है, गाँव में छोटी चक्की लगाई ने मसाला तैयार करीने वे अच्छी कमाई कर सके सा। सिलाई और बुनाई केंद्र री बात करा तो त्योहारा पे शादियों जो सीजन वे अणी में ये हुनर करीने महिला अच्छी कमाई रो वनारे सब बड़ो जरियो वणी सके। और अणी महिला में आपा देखा महिला समूह में सरकारी कल्याणकारी योजना री बात करा तो महिला रा बढ़ता थका कदम अपने भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा महिला री जे आर्थिक रूप स्वतंत्र बनावर वाते कई तरीका री बेहतरीन योजना चलाई जा रही है जनो लाभ हर महिला उठाई सके सा।
0: बिल्कुल हाची बात कह रहा हो सा। देखो बहुत ही बढ़िया जानकारी जो है आपने महिला बेना ने आपा दीदी सा। और देखो कार्यक्रम महीने आवा तो अणी कार्यक्रम महीने मनोरंजन वेणो भी जरूरी है सा। तो जानकारी रे लारे लारे आपा बहुत ही बढ़िया मनोरंजन की दुनिया में ले चला और हुणावा एक राजस्थानी गीत।
1: हाँ सा।

0: तो देखो सरजू भाई साहब, प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत कार्यक्रम में होना आयो और अब यहाँ पर सहेलिया ने जानकारी करावा कि यूपीआई नेट बैंकिंग रो उपयोग और वणी में कई कई सावधानियां अपने बिना ने राखनी चावे सा।
1: हाँ सा।
0: देखो आज रो जो दौर है डिजिटल दौर है, चाहे मोबाइल रिचार्ज करनो वे गयो, चाहे दुकान खाद बीज खरीदनो वे गयो, या पछे कहीं भी रिश्तेदार ने पैसा भेजना वे गया, आपने बैंक री जो लंबी लाइना है वणी में लागवारी जरूरत नहीं है। सब कुछ आपा देखा अपने मोबाइल में चुटकिया में भेजा और जटाणी तकनीक रा अनगिनत फायदा है, वटे थोड़ी सी लापरवाही अपनी जो गाड़ी कमाई है वने डुबई सके। अणी बातें आज आपा देखा कि किस तरह आपा सुरक्षित रह सका सा। देखो यूपीआई और नेट बैंकिंग कई वे सरजू भाई सा, तो सरल शब्द में आपा हम जा कि यो एक ऐसी सुविधा है जणियो आप मोबाइल पे फोन पे गूगल पे भीम या पचे पेटीएम जैसा ऐप रे जरिए सिर्फ आपा एक सेकंड में कहीं भी बैंक रे खाता में पैसा भेजी सका। अणी में आपा देखा एक सिर्फ एक यूपीआई पिन री जरूरत वे है सा। नेट बैंकिंग की बात करा तो यहाँ अपने बैंक की वेबसाइट या पचे ऐप रे जरिए जैसे योनो SBI IDBI आदि रे बातें आप देखा कि चलवा वाला डिजिटल जो बैंक है अन्य जरिए आप बड़ो लेन देन कर सका और बैंक रो स्टेटमेंट भी आप देखी सका। और अणी में आप फिक्स डिपोजिट जैसा FD है वैसा काम भी घर बैठा कर सका और अन्य बातें user ID और पासवर्ड की जरूरत पड़े है सा।
1: बिल्कुल हाँची बात कह रहा हूँ सा ममता भाई सा। देखो अणी रे महीने डिजिटल लेन देन करता समय अगर आप सजग रिया तो कोई भी धोखेबाज जो है आपना पैसा नहीं चुराई सके। तो आपने 6 बातों ने हमेशा ध्यान में रखनी है। और देखो अणी हूँ सब बड़ो नियम कि सिर्फ पैसा भेजवारे वास्ते ही नहीं पावरे वास्ते भी नहीं याद रखनो है। कहीं भी हूँ पैसा प्राप्त करवा या इनाम जीतवारे वास्ते कभी भी आपनो UPI पिन डालवारी जरूरत नहीं वेवे है। पिन सिर्फ जदी डालो जावे जदी अपना पैसा जो है अपना खातों कटी रहा हो। और अगर कोई आपने कहे कि आपने पैसा भेज रहे हाँ तो अपनो पिन डालो तो समझी जानो चाहे कि वो कोई न कोई धोखाबाज है ऐसा। तो अणी सब चीज़ों आपने बचावनो है और सावधानी जरूरी है सा।
0: और आपनो पिन OTP और पासवर्ड कदीस कने नहीं बताणो। आपनो UPI पिन नेट बैंकिंग रो लॉगिन पासवर्ड और मोबाइल पे आवा वालो जो OTP है वन्ने आपने लोकरी चाबी तरह राखनो है। बैंक रो कोई भी कर्मचारी वे मैनेजर वे या सरकारी अधिकारी वे कभी भी आपनो अपना फोन नंबर या फोन री जानकारी नहीं मांगे। अगर कोई फोन पे यो मांगे तो आपने तुरंत फोन काटी देनो। लोटरी इनाम और सरकारी योजना रा जे फर्जी संदेश है वणो भी आपने बचनो चावे सा। और आजकल कई वीरो सरजू भाई सा कि आपने व्हाट्सएप पे यो मैसेज आवे कि आपने 25 लाख री लोटरी लागी है।
1: हाँ सर।
0: तो अणी लिंक पे क्लिक करी ना आप PM योजना रो पैसो पावा तो यो कसी भी अनजान लिंक पे आपने क्लिक नहीं करनो। यो लिंक आपने मोबाइल ने हैक कर सके सा।
1: बिल्कुल हाँची बात कह रहा हूँ सा। देखो पैसा जो है भेजवो पहला आपनो नाम जो है वो जरूर जांचनो चावे कि जदि भी आप कहीं भी UPI रे जरिए पैसा भेजो या QR कोड स्कैन करो तो स्क्रीन पे आवा वाला व्यक्ति जो है वे दुकान के नाम ने दोबारा जरूर भर ले। सही नाम वेवा पे ही आगे बढ़नो है। अनजान ऐप कभी भी डाउनलोड नहीं करना है। धोखेबाज अक्सर फोन करीने केवे कि आपरो बैंक खातो बंद वेवा वालो है तो अणी ने चालू करवारे वास्ते आप एनी डेस्क या टीम वीवर ऐप डाउनलोड करो। तो ऐसा ऐप जो है वे आपने डाउनलोड नहीं करना है और आपने घरे बैठा बैठा आनी तरीके का कोई भी काम नहीं करना है जणियो कि आपा अन्ना शिकार वे जावा।
0: आपने सुरक्षित इंटरनेट रो उपयोग करनो चाहे सरजू भाई साहब। नेट बैंकिंग या पछे UPI रो उपयोग हमेशा अपने मोबाइल रा इंटरनेट उस करनो। रेलवे स्टेशन बस स्टैंड या कहीं भी दुकान रा जो मुफ्त वाईफाई है वटू जुड़ी ने

0: कदी भी पैसा रो लेन देन नहीं करनो। मजबूत पासवर्ड रखना और अनाने टेम टेम पे बदलतो रहनो। और आपनो जो नेट बैंकिंग है वनो पासवर्ड आपने नाम जन्म तिथि या गाड़ी रा नंबर पे नहीं रखनो। पासवर्ड आपने थोड़ो कठिन बनानो जिनमें शब्द नंबर चिन्ह जैसा सब शामिल वेना चाहे। अगर कदी धोखाधड़ी वेरी है तो आपने तुरंत कई करनो चाहे तो आपने कई करनो कि आपने कोई भी अनजान या पछे गलती वेजा तो आपने खातों पैसा कट सके तो घबरावारी बजाय तुरंत आपने पुलिस संपर्क करनो चाहे सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो बहुत ही बढ़िया जानकारी दीदी। और आप केवो तो एक और राजस्थानी गीत उणीने आपने बेनारो मनोरंजन करावा सा।
0: हाँ सा।

0: तो सरजू बैसा प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत सुनियो और आपा देखो बिना ने जानकारी कराई है कि नेट बैंकिंग रे उपयोग में सावधानी किस तरह रखे।
1: हाँ
0: तो अणी में एक बात यो है कि आपने बैंक ने सूचित करनो अगर आपने लारे सो वही जातो और तुरंत आपने बैंक रा जो कस्टमर केयर नंबर है वहीं पे फोन करनो, आपनो खातो और एटीएम जो है यूपीआई ब्लॉक करवानो और साइबर जो हेल्पलाइन है वह भारत सरकार राष्ट्रीय साइबर अपराध रा जो हेल्पलाइन नंबर है 1930 पे तुरंत फोन करने शिकायत दर्ज करानी। जत्रो आपा देखा जल्दी फोन करेंगा वस्त अपना पैसा जल्दी मिलवारी संभावना वधरी ज्यादा बढ़ी जाएगा सा।
1: बिल्कुल सा, देखो सा कि अबे आपा जानकारी करावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे बारे में। तो देखो ममता भाई साहब, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे जटे आपा बात करी रहा हाँ, तो यह भारत सरकारी एक बहुत ही बढ़िया अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। जणीरो शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 ने कीधो गयो हो। अणी योजना रो मुख्य उद्देश्य देश रे वणा छोटा उद्यमिया ने वित्तीय सहायता प्रदान करनो है। जणी रे पास आपनो व्यवसाय शुरू करवा या वन्ने बढ़ावा रे वास्ते पर्याप्त पूंजी नहीं है। अक्सर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र है वणी में छोटा व्यापारी साहूकार वणारे चंगुल में फंसी जावे है। मुद्रा योजना वणा ने बैंकारे माध्यम सुलभ और सस्तो ऋण दिलाईने स्वावलंबन री राह दिखावे है। तो अणी तरीका घणी हारी योजना री श्रेणिया भी व्या करे है जे अबार आपा आपणी बहना ने बताई रहा सा।
0: बिल्कुल सा, योजना री श्रेणिया री बात करा तो आपा देखा मुद्रा योजना रे तहत ऋण ने लाभार्थी रे व्यवसाय रे विकास रे वास्ते वित्तीय आवश्यकता रे आधार पे 3 श्रेणिया में बांटियो गयो है सा। शिशु ऋण री बात करा तो अने तहत 50,000 रुपये तक रो ऋण दियो जावे। यो वणा लोगा रे वास्ते है जो बिल्कुल नयो छोटो व्यवसाय शुरू करना चाहिए रहे सा। दूसरो है किशोर ऋण, अणी में 50,000 लेने 5,00,000 तक रो ऋण दियो जावे। अणी में उद्यमिया रे वास्ते वणारो जो व्यवसाय है पहले विस्थापित है वन्ने विस्तार देवारे वाते है। और तीसरो जो ऋण है तरुण ऋण है, अने अंतर्गत 5,00,000-10,00,000 तक रो ऋण प्रदान कियो जावे। यो अनुभवी उद्यमियारे वाते बड़ा स्तर पे वन्ने निवेश री आवश्यकता वे है सा। मुख्य विशेषता और लाभ री बात करा तो बताओ सरजू भाई साहब।
1: देखो जटे आपा मुख्य विशेषता और लाभ री बात करी ना हाँ ममता भाई साहब, तो आपणी जत्री भी बहना है वणा ने आपा बतावा कि वन्ना गारंटी रा ऋण री अणी योजना री सब बड़ी विशेषता है कि या है कि ऋण लेवारे वास्ते कणी भी प्रकार री सुरक्षा या गारंटी जमा करवारी आवश्यकता नी वेवे। और सब बढ़िया ब्याज दर री बात करा तो मुद्रा ऋण री ब्याज दर अन्य व्यावसायिक ऋण री तुलना में कम और लचीली व्या करे है। और जटे मुद्रा कार्ड री बात करा तो ऋण स्वीकृति वेवा पे लाभार्थी जो है वे एक मुद्रा कार्ड दियो जावे जो एक डेबिट कार्ड री तरीकों काम करे है। अणी उद्यमी आपणी जरूरत रे अनुसार किश्ता में पैसा निकाली सके है। समावेशी विकास री बात करा तो अणी योजना रे महीने जत्री भी महिला है वे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी तो आवेदका ने प्राथमिकता दी जावे ताकि समाज रो हर वर्ग आर्थिक रूप सशक्त वे सके। तो अणी तरीका या विशेषता है सा।
0: और अणी में कौन आवेदन कर सके अन्नी बात करा तो कोई भी भारतीय नागरिक जो अपना छोटो व्यवसाय जैसे दुकानदारी वेगी, फल सब्जी विक्रेता वेगियो, लघु उद्योग री मरम्मत री दुकान री बात करा तो वो वेगियो, खाद्य प्रसंस्करण इकाई वेगी या पच्चे सेवा क्षेत्र में जुड़े थोक को काम शुरू करना चाहे वो अणी योजना रो लाभ उठाई सके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपा देखा न केवल स्वरोजगार ने बढ़ावा देवे बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने भी मजबूती प्रदान करे और यह योजना आत्मनिर्भर भारत रे संकल्प ने सिद्ध करवा में एक मील रो पत्थर साबित वे सके। आज लाखों युवा महिला आणी योजना रे जरिए आपनो खुद रो व्यवसाय शुरू करीने आत्मनिर्भर बनी रहे सा।
1: बिल्कुल सा ममता वैसा, देखो बहुत ही बढ़िया जानकारी जो है आप अपना बहना ने दीदी। और अभी देखो सा कि एक और राजस्थानी गीत सुनाई ने अपनी बहनों मनोरंजन करावा सा।

0: तो देखो सरजू भाई साहब प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत सुनाए और अबे आपा सहेलियां ने देखो आपा हर आपने जो भी प्रोग्राम वे वदी आपने कार्यक्रम के दौरान आपा सहेलियां ने पर्यटन स्थल पे ले चलना।
1: हाँ
0: और देखो बालक टाबर है गर्मी की छुट्टियां भी पड़ी गई है तो अनी टाइम पे तो और जानो चावे सा।
1: बिल्कुल सा।
0: तो देखो आज आपा सहेलियां ने ले चलना माउंट आबू।
1: हाँ सा।
0: तो देखो राजस्थान रो एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू यो अरावली पर्वतमाला री जो गोद है वणी में बस्यो थको एक खूबसूरत आपा देखा कि बेहद खूबसूरत शांत और पर्यटन स्थल है।
1: हाँ
0: यो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सुखद मौसम और नई वास्तुकला शानदार है और धार्मिक महत्व के कारण पूरी दुनिया में यो प्रसिद्ध है सा। अन्य बारे में आपा और जानकारी करा कि देखो माउंट आबू राजस्थान रा सिरोही जिला में स्थित है। यो थार मरुस्थल रे करीब व्यवहार के कारण ऊंचाई रे कारण बेहद ही ठंडो और हरियो भरियो रेवे सा। अठे मुख्य आकर्षण की बात करा तो गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला और पूरा राजस्थान री सब ऊंची चोटी है गुरु शिखर युवाणी पे स्थित है। और इतिहास की बात करा तो पौराणिक कथा के अनुसार अणि स्थान रो नाम अर्बुदारण्य है जो बाद में बदली ने माउंट आबू वेग्यो है सा।
1: बिल्कुल
0: मुख्य
1: सा।
0: आकर्षण और दर्शनीय स्थल की बात करा सरजू भाई सा
1: तो देखो सा कि अणि में ममता भाई सा देखो माउंट आबू में प्रकृति प्रेमी इतिहास प्रेमी धार्मिक यात्रा रे वास्ते बहुत ही बढ़िया जगह है। जनी रे महीने आपा देखा देलवाड़ा रो जैन मंदिर यो माउंट आबू रो सब बड़ो आकर्षण और 11वीं 13वीं शताब्दी रे वच्चे वण्यो यो 5 मंदिरा रो समूह जो आपणी असाधारण संगमरमर री नक्काशी रे वास्ते विश्व प्रसिद्ध है। अणि री बारीकी कारीगरी देखी ने लोग हैरान रह जावे है। जनेस लारे आपा नक्की झील री बात करा तो या जो भारत री पहली मानव निर्मित झील मानी जावे है। लोक कथा रे अनुसार देवता रे आपणे नाखूनू अणि झील रो खोद्यो गयो हो। अणि वासे अनु नाम नक्की झील पड़ियो है कि अटे बोटिंग रो आनंद ले सका जिसे नाव सफारी कर सका। झील रे किनारे टोड रोक मेंढक जैसी दिखवा वाली चट्टाना है जे बहुत ही आकर्षण रो केंद्र बण्यो तको है। लारे लारे सनसेट पॉइंट री बात करा तो नक्की झील रा दक्षिण पश्चिम में स्थित एक स्थान ढलता सूरज रा अद्भुत नजारा रे वास्ते प्रसिद्ध है। शाम रा समय में यदि सूरज पहाड़िया रे पाछे छिपे तो आसमान जो है रंग बदलता तक देखवा मैंने वो बहुत ही सुंदर सो नज़ारो है। जो अगर आपने बिना कोई भी जावे तो वना ने केवा कि यो नज़ारो जरूर देख जो सा।
0: बिल्कुल सा। लारे लारे अचलगढ़ रा किला री बात करा तो मेवाड़ रा जे महान राजा जो राणा कुंभा वना 15वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित करने ने किला रो इतिहास प्रेमिया रे वाते एक बेहतरीन जगह या है। और किला रे पास में अचलेश्वर महादेव रो मंदिर है जटे भगवान शिव रे अंगूठा री पूजा वे वैसा। मौसम और यात्रा आपा देखा आणि अटे सब अच्छो समय की बात करा तो माउंट आबू रो जो मौसम है साल भर सुहावनो रेवे जेने कारण ने राजस्थान रो स्वर्ग भी कियो जावे सा। गर्मी में देखा मार्च जून जदि पूरा राजस्थान में कड़ाकारी गर्मी पड़े वनान अटे जो तापमान है 25 से लेने 32 डिग्री रे बीच में रेवे तो यो समय मैदानी इलाका में गर्मी और राहत पावर वाते सब बढ़िया है सा।
1: बिल्कुल सा। और जटे मानसून री बात करा तो जुलाई और सितंबर वर्कारा मौसम में वर्कारा दना में माउंट आबू री खूबसूरती रा 4 गुणा बढ़ जावे है। तो अणि रे चारों तरफ जो है धुंध है बादल है झरना बेता लगा दिखाई देवे प्रकृति प्रेमिया रे वासी यो बहुत ही अच्छो बेहतरीन समय है। और सर्दिया री जटे आपा बात करा तो अक्टूबर और फरवरी रो समय की सर्दिया में अठे बहुत ही अच्छी ठंड पड़े है। तापमान कदी कदी 0 डिग्री भी रिया करे है या अणि नीचो भी चलियो जावे है। तो अणि रे महीने कहिए कि यो जो सब समय है तो अणि रे महीने जाई सका। और अबार तो बच्चा री छुट्टियां है तो आराम अणि जून महीना रे महीने जाई सका जटे बिल्कुल ही ठंडो मौसम रेवे और घूमवार आनंद आपा पूरी तरीका ले सका सा।
0: संस्कृति और खान पान और खरीदारी री बात करा तो माउंट आबू में राजस्थानी और गुजराती

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, अभी आपने सुना ग्रामीण महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम सहेलियाँ रही बाड़ी। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

फिल्म संगीत के इस सेगमेंट में आपका स्वागत, प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त संगीता पैराठी। श्रोताओं, फिल्म संगीत एक ऐसा संगीत होता है, संगीत ही ऐसा संगीत होता है कि उसमें कोई भाषा, कोई शब्द, कोई वस्तु काम नहीं आती है। बस उसके जब तार झनझनाते हैं संगीत के, चाहे वो कोई भी इक्विपमेंट हो, चाहे वो कोई भी सरगम हो, कहते हैं ना संगीत ऐसी दुनिया होती है जहाँ कोई बंधन नहीं होता। ऐसे ही मोहब्बत में कोई बंधन नहीं होता। कहते हैं मोहब्बत ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है और ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना भी देता है, दिल की हर दर्द को मुस्कुराहट में बदल देता है। तो ऐसे ही मुस्कुराते हुए प्यारे से गीत हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। कुछ नए फिल्मी गीत हम इस सेगमेंट में आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहला गीत आप सुनिए, फिल्म सैयारा से है और इसे आवाज़ दी है विशाल मेहरा और हंसिका पारिक ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं और कार्यक्रम में इस एक सेगमेंट में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ नए फिल्मों से गीत। पुरानी मोहब्बत किताब की तरह होती है, जितनी बार भी पढ़ो उतनी ही खास लगती है। आज का प्यार ना अक्सर वक्त के साथ बदल जाता है, पर कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो हर हाल में साथ निभाता है। तो ऐसी ही मोहब्बत भरे नगमे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज़ों में है, फिल्म धुरंधर से।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, ब्रेक के इस बार फिर से आपका स्वागत है फिल्म संगीत के कार्यक्रम में। कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ नई फिल्मों से गीत। अगला गीत है वॉर टू से, प्रीतम, अरिजीत सिंह, निकिता गांधी और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज़ें हैं।

मोहब्बत में सिर्फ आई लव यू बोलना ज़रूरी नहीं होता, समझना और साथ देना भी ज़रूरी होता है। लव लाइफ तब तक ही खूबसूरत लगती है जब दोनों एक दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझें। जहां सिर्फ फीलिंग्स हो वो अट्रैक्शन होता है, और जहां रिस्पेक्ट और केयर भी हो वहां पर ट्रू लव होता है। तो मोहब्बत तो ऐसी ही होती है। और कार्यक्रम का अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म एनिमल से, जिसे आवाज़ दी है विशाल मिश्रा ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे थे और कार्यक्रम के इस सेगमेंट में सुना रहे थे आपको कुछ नए फिल्मों के गीत। कार्यक्रम का आखिरी गीत मिस्टर एंड मिसेस माही से। इसी के साथ आपकी दोस्त संगीता को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में विकास चर्चा के अंतर्गत।

या बिजली कंपनियों को भेज सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण होता है क्योंकि सौर ऊर्जा से प्रदूषण कम होता है और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। सरकारी सब्सिडी भी किसानों को मिलती है क्योंकि सरकार सोलर पंप लगाने पर अच्छी खासी सब्सिडी देती है और गांव में बिजली की सुविधा उपलब्ध हो जाती है क्योंकि दूर दराज क्षेत्रों में बिजली की और सिंचाई की सुविधा नहीं है। बड़े और छोटे सभी किसान इस योजना के पात्र हैं। किसान समूह और सरकारी समितियां, पंचायतें भी ऐसी इस योजना की पात्र हैं और ऐसे किसान जिनके पास सिंचाई योग्य भूमि हो वे इसके पात्र हैं। लेकिन इस योजना की कुछ परेशानियां हैं कि शुरुआत में लागत बहुत ज़्यादा है तो सब्सिडी के बाद भी किसानों को कुछ राशि स्वयं लगानी होती है। रखरखाव की समस्या है, मौसम पर निर्भरता है और तकनीकी जानकारी की कमी है। तो ये तो थी प्रधानमंत्री कुसुम योजना। आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की एक योजना है, यानी कि इस योजना की शुरुआत किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ने और खेती में बिजली तथा डीजल की लागत कम करने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सोलर पंप उपलब्ध करवाना, डीजल पंपों की जगह सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना, बिजली का खर्च कम करना और अतिरिक्त बिजली देकर किसानों को आय देना है।

इस योजना के अंतर्गत काम करने से बिजली के बिल में किसानों के लिए कमी हो जाती है, क्योंकि सोलर पंप से सिंचाई करने पर बिजली और डीजल का खर्च कम होता है, अतिरिक्त उनकी आय बचती है, क्योंकि अगर सौर ऊर्जा अगर वो अतिरिक्त बना रहे हैं सौर बिजली, तो सरकार

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है। टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
3: इंडिया इज रिसेंटली लॉन्च।
4: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
3: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केन्द्रों

0: और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले एआईएडीएमके ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
4: चाय, ये चाय।
5: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में

संस्कृत उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मिडी वेव 266 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, दोपहर 2:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं किसानों का पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम होनावाला हगला किसान भाई बहना ने आपानो राम राम सा। देखो सा कृषि जगत कार्यक्रम रो टेम भी हो और आपा जो है किसान रिवात में घनी हरी जानकारियां लेने आया सा। और देखो ये कार्यक्रम में जानकारियां भी लाया और कार्यक्रम रो टेम भी वे गयो है। और देखो लखमा भाई, भमरा भाई, रत्ना भाई, हंगलाई जो है ये न सब अपनी बहना अंदुजन सब जो है वे भी देखो कार्यक्रम रो आनंद ले रहा वेगा और देखी रहा वेगा कि देखो आज मणि बहना जो है मणि कृषि जगत कार्यक्रम में कई कई जानकारियां लेने आई है सा। तो देखो सा ममता भाई सा किसान रिवात में जानकारी आज आपा किसान भाई बहना ने करावा कि कृषि में ड्रोन रो उपयोग जो है वो कणी तरीकों करनो जावे सा।
1: बिल्कुल सा, कृषि में ड्रोन रो उपयोग री बात करा सरजू भाई सा, तो फसल री निगरानी लेने, वन्य स्वास्थ्य आकलन लेने, कीटनाशक और उर्वरक रो सटीक छिड़काव वाणियों कर सके। अपाणी में देखा कि ड्रोन में उन्नत जो सेंसर वे वो मल्टी स्पेक्ट्रल वाणी में कैमरा लगे थकावे। जो ड्रोन खेतारे ऊपरे उड़ान भरे और यो फसलारी ऐसी तस्वीर ले जिन्हें इंसान वनरी खुली आंखों नहीं देखी सके और तस्वीर ने विश्लेषण कर पता लगाया जा सके कि फसल रा कणी हिस्सा में पोषक तत्व की कमी है, कटे बिना बीमारियां पनपी रही है और अटे कटे कीटारो हमलो वियो है और किसान पूरी फसल खराब एवं पहली वनों सही कदम उठाई सके सा।
0: बिल्कुल सा, आणी में देखो कीटनाशक और उर्वरक का या छिड़काव री जटे बात करा तो अन्नो सटीक छिड़काव वे वे पारंपरिक रूपों खेतारे महीने कीटनाशका रो छिड़काव पीठ पे टेक बांधीन या हाथों करियो जाई सके जण्यो काफ़ी समय लागे और रसायन जो वे वे वणा सीधा संपर्क में आवाऊँ किसानारे स्वास्थ्य ने भी खतरो रेवे है सा। जणी में आपा देखो समय री बचत री जटे बात करा तो किसान भाई लोग ड्रोन रू मात्र 10-15 मिनट में एक एकड़ खेत में छिड़काव कर सके है। जणीरे महीने संसाधनारी बचत वे वे ड्रोन तकनीकों पानी कीटनाशकारी बर्बादी रुके है क्योंकि वो केवल जरूरत वाला हिस्सा पे भी लक्षित और छिड़काव करे है सा।
1: मिट्टी में खेत रे विश्लेषण की बात करा तो फसल बोवों पहली ड्रोन रे जरिए जमीन रो नक्शो तैयार कियो जावे अणी में मिट्टी की बनावट नमी रो जो स्तर है खेत रे डालने सटीक पतो चाले है और अणी कई एक डेटा किसाना ने यो तय करवा में मदद करे कि कणी क्षेत्र में कसी फसल बेहतर वेगा और बीज बोवारो सही पैटर्न कई वेणो चावे सा।
0: देखो सा जटे आप सिंचाई प्रबंधन की बात करा ममता भाई सा और किसान भाई बहना ने बतावा कि देखो ड्रोन में थर्मल सेंसर लग्या रेवे जे खेत रा सूखा और अत्यधिक नमी वाला हिस्सा

0: पहचान करी सके। अणियों किसानों ने यो समझ में आसानी वेवे है कि खेत रे कणी भी हिस्सा में पानी देवारी तुरंत आवश्यकता वे और जटे जल जमाव री समस्या वे तो अणि तकनीकू पानी री भारी बचत भी विया करे है सा।
1: और फसल री पैदावार रो अनुमान और नुकसान रो आकलन भी ड्रोन वेवे सा। बाढ़, ओलावृष्टि, सूखा जैसा प्राकृतिक जी आपदा है वने बाद में ड्रोन रे जरिए फसला ने व्यथो को नुकसान तुरंत और सटीक वनो आकलन कियो जा सके। यो डेटा बीमा दावा और वाते जल्दी निपटावा में किसान और सरकार दोई री मदद करे है। अन्य अलावा कटाई पहली पैदावार रो एक अनुमानित आंकड़ो भी मिले है सा।
0: देखो साग जी, जटे आपा यो ड्रोन जो है वने तकनीक रे लाभ और चुनौतियां अगर आपा बात करा तो अणि में देखो लाभ महीने है कि लागत में कमी वेगा, कीटनाशक पानी और श्रम पे खर्च भी घटेगा। जटे अन्य लारे सुरक्षा री बात करा तो किसान हानिकारक रसायनों सीधा संपर्क में आवो वंचेगा। लारे समय री बचत री बात करा तो घंटा तक कम मिनटा में पूरो काम वी जावे। तो अणि महीने की कृषि में ड्रोन रो उपयोग न केवल खेती और आसान सुरक्षित बनावे बल्कि यो पर्यावरण रे अनुकूलन भी है। पर्यावरण रे अनुकूल है तो अणि रे महीने क्योंकि यो रसायन रो दुरुपयोग थामे है। भारत सरकार भी जो है ड्रोन दीदी जैसी योजना है सब्सिडी रे माध्यमों ग्रामीण क्षेत्र और कृषि में आना रे उपयोग ने लगातार बढ़ावो दे रहा है और आवा वाला समय में यह तकनीक भारतीय किसानारी आय बढ़ावा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करवा में एक मील रो पत्थर साबित वेगा सा। तो देखो सा कि ममता भाई सा बहुत ही बढ़िया जानकारी या वाली दीदी सा आपा किसान भाई बहना ने। और अबे आप कई केणो चेहरा हो सा।
1: बिल्कुल सा। तो सरजू भाई साहब, मारो इशारो यो है कि किसान भाई ने एक राजस्थानी गीत सुने था सा कार्यक्रम में।
0: हाँ सा।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: दी, ये देख कैसे?
6: हैप्पी बर्थडे भाई।
5: दीका,
7: हाँ मेरा फेवरेट कलर।
6: हमेशा शॉपिंग।
8: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
9: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
10: I know pa, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
8: I know na.
10: RBI कहता है,
11: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
12: तो देखो सरजू भाई, सा कार्यक्रम में प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत सुनाए और लाल लरिया पा संदेश भी सुनाया सा।
13: हाँ सा।
12: और अभी देखो किसान भाई ने जानकारी करावा कि कृषि उत्पाद और परिवहन री बनारे कई कई समस्या वही सके अणी बारे में जानकारी करावा सा।
13: हाँ सा।
12: तो देखो भारत एक कृषि प्रधान देश है, जटे आप देखा अधिकांश जो आबादी है वह पूरी खेती रे ऊपर निर्भर करे। किसान कड़ी मेहनत करीने अनाज फल और सब्जियां और रिकॉर्ड रो उत्पादन करे, लेकिन आप देखा कि यदि उत्पाद सुरक्षित और सही टाइम पे बाजार में मंडी तक पहुंचावारी बात आवे तो परिवहन की कमी के कारण एक बड़ी चुनौती सामने आवे है। कृषि क्षेत्र में आप देखा परिवहन कई कई जुड़ी थे की समस्या है, जणो किसान भाई की आर्थिक स्थिति और देश की जो खाद्य सुरक्षा है उनने प्रति आप देखा कि नरो हरो प्रभाव नाके है सा।
13: बिल्कुल सा। और देखो सा कि इनमें कृषि उत्पादन रे परिवहन में आवा वाली जितनी भी समस्या है बने बारे में बात करा जानकारी करावा कि देखो बुनियादी ढांचारी और अणीरे अभावरी। तो भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में आज भी 12 मासी हर मौसम में चालू रहवा वाली सड़कारी कमी है। मानसून रा दना में घावरी सड़का में कीचड़ में बदली जावे, जण्यू कही वे खेता में मुख्य मार्ग तक उपज ले जावा असंभव वे जावे और बेहद ही ज़्यादा खर्चीलो समय वे जावे। तो अन्य अलावा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है तो ग्रामीण संपर्क मार्ग

0: गातो चालासा
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम सा।
1: सा।

0: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, अभी किसान भाइयों ने सुना अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत। दोपहर 2:03 बजने वाले हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने माना कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। उन्होंने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोप, मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है। इसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। इटली के प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओहयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा इनका प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नई मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोक भवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लिकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए भुवनेश्वर, कानपुर

0: और मेरठ में 3 नए परीक्षा केंद्र शुरू किए हैं। इसके साथ ही केंद्रों की कुल संख्या 83 हो गई है। आयोग के अनुसार लगभग 23,000 उम्मीदवारों ने इन नए केंद्रों के लिए आवेदन किया है। झारखंड के रांची में धुरवा स्थित पुलिस मुख्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के 25 नक्सलियों और जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों ने हथियारों सहित आत्मसमर्पण किया। इनमें 8 नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, दोपहर 3:05 हो चुके हैं। हमारी दोपहर सभा के प्रसारणों को अब यहीं देते हैं विराम। सायं 5 बजे सायंकालीन प्रसारणों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

शाम के 5 बजे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं युवाओं का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम को आप हमारे दोनों ही चैनल से एक साथ सुन सकते हैं, FM रेडियो लेक सिटी 101.9 MHz पर भी। तो चलिए सुनते हैं युवाओं का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: दोस्तों, हम वो जनरेशन है जो सुनती कम है और करके दिखाती ज़्यादा है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों आज के इस खास कार्यक्रम युववाणी के लिए। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त नेहल और मेरे साथ है
1: निकिता। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: तो आराम से बैठिए, सांसों की रफ्तार ज़रा धीमी करिए, क्योंकि अगला आधा घंटा बस आपका है और ये आवाज़ बस आपके साथ है।

0: दोस्तों, नारी है तो कल है, नारी से ही संसार, उसके बिना अधूरा हर सपना हर त्योहार। अब 2047 में बदलेगा ये दौर सारा, हर बेटी लिखेगी खुद अपना इतिहास दोबारा। दोस्तों, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं, जो सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि आज की सच्चाई भी है। India@2047 और उसमें महिलाओं की भूमिका।
1: यार, सोच के ही कितना अच्छा लगता है। 2047 मतलब आज़ादी के 100 साल। लेकिन सच बताऊँ, उस भारत की सबसे बड़ी ताकत होगी कौन?
0: निकिता, मुझे लगता है महिलाएं, क्योंकि आज की लड़की सिर्फ सपने नहीं देखती, उन्हें पूरा भी करती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा नेहल। पहले जहाँ लड़कियों को घर तक सीमित रखा जाता था, आज वही लड़कियाँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, साइंस हो या पॉलिटिक्स हो।
0: हाँ, और अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो हमारे देश की महिलाएं दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं, जैसे PV सिंधु, मैरी कॉम और कल्पना चावला।
1: बिल्कुल सही कहा। और सिर्फ बड़े नाम ही नहीं, बल्कि आज हर छोटी जगह की लड़की भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही है।
0: और भारत 2047 में महिलाएं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए बदलाव लाएंगी। वो लीडर्स होंगी, वो इनोवेटर्स होंगी और डिसीजन मेकर्स भी।
1: और नेहल, इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाएगी एजुकेशन। जब एक लड़की पढ़ती है तो सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरा परिवार आगे बढ़ता है।
0: बिल्कुल, और आज गवर्नमेंट भी महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिससे लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है।
1: पर अभी भी थोड़ा चैलेंज है, जैसे जेंडर इनइक्वलिटी, सेफ्टी इशू, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा।
0: हाँ, क्योंकि आज की लड़की डरती नहीं है, वो अपनी आवाज़ उठाना जानती है।
1: और 2047 तक हम एक ऐसा भारत देखेंगे जहाँ हर लड़की को बराबरी का हक मिलेगा, हर सपना सच होगा।
0: तो दोस्तों, भारत 2047 का सपना तभी पूरा होगा जब हमारी महिलाएं मजबूत, आत्मनिर्भर और सशक्त बनेगी।
1: क्योंकि जब नारी आगे बढ़ती है तो देश खुद आगे बढ़ जाता है।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, जब देश को नई सोच की जरूरत थी, तब एक युवा नेता ने कदम आगे बढ़ाया। जब भारत बदलाव के मोड़ पर था, तब एक शख्स ने कहा, भविष्य तकनीक में है।
4: दोस्तों, आज के हमारे शख्सियत है वो नेता जिन्होंने भारत को 21वीं सदी की ओर देखने का नज़रिया दिया, राजीव गांधी।
3: निकिता, तुम्हें पता है राजीव गांधी जी को की सबसे खास बात क्या थी?
4: क्या?
3: वो पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहते थे, वो तो एक प्रोफेशनल पायलट थे, अपनी लाइफ में खुश थे।
4: बिल्कुल सही कहा, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हें देश की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी, और जब उन्होंने जिम्मेदारी ली तो पूरी ईमानदारी से निभाई।
3: और सबसे खास बात, वो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा फैसला लेना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती।
4: उनकी सोच और उनका काम तो काफ़ी लाजवाब था। मुझे लगता है उनकी सबसे बड़ी सोच थी मॉडर्न इंडिया।
3: बिल्कुल, उन्होंने कंप्यूटर और टेलीकॉम सेक्टर को बढ़ावा दिया। उस समय लोग कहते थे कंप्यूटर आएंगे तो नौकरियां ख़त्म हो जाएगी,
4: लेकिन उन्होंने दूरदर्शिता दिखाई और आज देखो, IT सेक्टर भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है।
3: सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, उन्होंने शिक्षा और युवाओं पर भी ध्यान दिया।
4: हाँ, और पंचायत राज सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए, उससे गांवों को आवाज़ मिली, लोकतंत्र जमीनी स्तर तक पहुँचा।
3: और उनकी बात करें चुनौतियाँ और सच्चाई की, तो उनकी ज़िंदगी सिर्फ उपलब्धियों से भरी नहीं थी। हाँ, उन्हें कई आलोचनाओं और विवादों का भी सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने कभी देश के लिए काम करना नहीं छोड़ा। यही एक सच्चे लीडर की पहचान होती है।
4: और 1991, वो साल जब देश ने एक युवा नेता को हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन उनकी सोच, उनका विज़न आज भी भारत के हर कोने में जिंदा है।
3: दोस्तों, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ लोग भविष्य की दिशा तय करते हैं।
4: तो ये थी बात एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने भारत को आधुनिक सोच दी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी दुखद मृत्यु ने पूरे देश को हिला दिया, और उसी दिन को हम आज एक संदेश के रूप में मनाते हैं, नेशनल एंटी टेररिज्म डे, ताकि हम सब मिलकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठा सकें।
3: नफ़रत की आग जब दिलों में जलती है, तो मासूम जिंदगियाँ भी पल में बदलती हैं। अब वक्त है एक आवाज़ उठाने का, आतंक के खिलाफ कदम बढ़ाने का। दोस्तों, डर एक ऐसा शब्द जो इंसान से उसकी हिम्मत छीन लेता है।

0: और आतंक एक ऐसी सच्चाई जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरे समाज को घायल कर देती है।
1: नेहल, ये दिन सिर्फ याद नहीं दिलाता बल्कि हमें जिम्मेदारी भी देता है।
0: निकिता, क्या तुम्हें पता है ये दिन क्यों मनाया जाता है?
1: हाँ, 21 मई को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर।
0: सही कहा, उनकी हत्या एक आतंकी हमले में हुई थी और उसी घटना ने देश को झकझोर दिया।
1: और मकसद की बात करें तो इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ उन्हें याद करना नहीं है बल्कि ये समझना है कि आतंकवाद कितना खतरनाक है और हमें इसके खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना भी ज़रूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा निकिता, इसकी गहराई से बात करें तो आतंकवाद सिर्फ बम धमाकों या हमलों तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये डर फैलाता है, नफरत बढ़ाता है और सबसे बड़ी बात, ये इंसानियत को ख़त्म करता है।
1: सोचो, एक पल में कितने परिवार बिखर जाते हैं, कितने सपने अधूरे रह जाते हैं।
0: और सबसे दुख की बात कि ये इसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, ये सिर्फ तबाही लाता है।
1: नेहल, मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है ना, वो युवाओं की होती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि कई बार आतंकवाद की शुरुआत गलत सोच और भड़कावे से होती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और अगर हम जागरूक रहेंगे, यानी युवा पीढ़ी जागरूक रहेगी, सही और गलत में फर्क समझेगी, तो हम खुद को और दूसरों को भी बचा सकते हैं।
0: सही कहा निकिता, सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहें, नफरत भरे मैसेज, इनसे दूर रहना भी एक तरह से आतंकवाद के खिलाफ कदम है। और देश की सुरक्षा सिर्फ सेना या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: और अगर हमें कहीं कुछ संदिग्ध दिखे तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
0: और सबसे ज़रूरी, हमेशा एकता बनाए रखना, क्योंकि आतंकवाद का सबसे बड़ा हथियार है विभाजन।
1: कभी कभी सोचती हूँ, जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया होगा, उनका दर्द कितना गहरा होगा।
0: हाँ, वो दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।
1: इसीलिए हम सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन ये याद रखना होगा कि हमें आतंकवाद के खिलाफ खड़ा रहना है।
0: तो आइए आज के दिन हम सब मिलकर एक संकल्प लें
1: कि हम नफरत नहीं फैलाएंगे, अफवाहों पर भरोसा नहीं करेंगे और हमेशा इंसानियत का साथ देंगे।
0: क्योंकि हम सभी आतंकवाद का विरोध करते हैं और शांति का समर्थन करते हैं। नफरत की आग को अब बुझाना होगा, इंसानियत का दीप फिर जलाना होगा। जो डर फैलाए उसका अंत तय है, अब मिलकर आतंक को मिटाना होगा।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये किसी फिल्म स्टार या बड़े बिजनेसमैन की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने समाज की एक चुप्पी को तोड़ने की हिम्मत दिखाई। ये कहानी है अदिति गुप्ता की।
6: जी हाँ दोस्तों, हम मॉडर्न दुनिया में जी रहे हैं जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी हर दिन आगे बढ़ रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज भी हमारे समाज में पीरियड यानी महावारी जैसे नेचुरल टॉपिक पर चुप्पी क्यों है?
5: सही कहा ने हल। अदिति गुप्ता ने बचपन से ही इस चुप्पी को महसूस किया। उन्हें भी वही रेस्ट्रिक्शन झेलनी पड़ी, जैसे मंदिर में नहीं जाना, अलग रहना, खुलकर सवाल ना पूछ पाना और सबसे बड़ी बात सही जानकारी की कमी।
6: लेकिन अदिति ने इस चुप्पी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, उन्होंने इसे अपनी ताकत बना दिया। उन्होंने अपने हस्बैंड तुहिन पॉल के साथ मिलकर शुरू किया मेंस्ट्रुपीडिया,
5: एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लड़कियों को पीरियड्स के बारे में आसान, सही और साइंटिफिक जानकारी दी जाती है कॉमिक्स के जरिए, जो इतनी सिंपल है कि छोटी बच्चियां भी बिना डर और शर्म के साथ समझ सकें।
6: लेकिन दोस्तों, जब अदिति ने इस सेंसिटिव टॉपिक पर काम शुरू किया तो लोगों ने उनका साथ देने के बजाय सवाल उठाए। कुछ ने मजाक बनाया तो कुछ ने कहा आखिर ये सब क्यों।
5: लेकिन अदिति कभी रुकी नहीं, उन्होंने हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपने मिशन को जारी रखा।
6: आज मेंस्ट्रुपीडिया हजारों नहीं लाखों लड़कियों तक पहुंच चुका है, स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात, अब लड़कियां इस टॉपिक पर खुलकर बात कर पा रही है।
5: बिल्कुल सही कहा दोस्तों। अदिति गुप्ता ने हमें ये सिखाया है कि बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं आता, कभी कभी एक छोटी सी शुरुआत भी सोसाइटी को बदल सकती है।
6: और सबसे बड़ी बात, हिम्मत वही है जब आप उस बात के लिए खड़े होते हैं।

0: जिस पर दुनिया चुप रहती है।
1: तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई आइडिया है जिससे समाज बेहतर बन सकता है, तो डरिए मत, क्योंकि शायद वही आइडिया किसी की ज़िंदगी बदल सकता है।

0: दोस्तों, आदित्य चोपड़ा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर हैं। वे यशराज फिल्म्स के चेयरमैन भी हैं, जो भारत की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों में से एक है। आज ही उनका है जन्मदिन।
1: इनका जन्म 21 मई 1971 को हुआ। उन्होंने अपनी पहली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में बनाई 1995 में।
0: और सबसे खास बात यह है कि आदित्य चोपड़ा बहुत ही प्राइवेट व्यक्ति है। वे मीडिया से दूर रहते हैं, कम इंटरव्यू देते हैं, लेकिन उनका काम ही उनकी पहचान है। उनसे हमें एक बड़ी सीख मिलती है, शोर करने से ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा काम करना।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। मैं थी रेडियो दोस्त आपकी निहल, और मेरे साथ
0: निकिता।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा था। आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम धीणारी बाता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान वेटरनरी एंड एनिमल साइंस बीकानेर।

Bakyan, Bakyan, Bakyan.

0: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बातें।
1: काकी साहब, छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुन्ना उतार किया बैठा हो।
2: काहे करूं दाबू बेटा, भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और विरोध जीसोरो भी कौन।
1: आप सुनो आकाशवाणी कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया। काकी सा ई कार्यक्रम सुनन सु मिलसी पशुपालन सु जुड़ी होरी सबली समस्या रो समाधान।
3: इस कार्यक्रम की प्रायोजित है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
4: धीनेरी बातिया, धीनेरी बातिया कार्यक्रम सुनन वाला सगला पशुपालक भाई ने हरखू भाई और
5: साथे साथे बंशी भाई रा भी
4: मोकड़ा मोकड़ा
5: राम राम
4: राम राम बंशी भाई
5: राम राम हरखू भाई राम राम
4: और राम राम सगला महाराज का भाई सुनन वाला है और हमारे सामने जिका चौपाल में बैठा है वे सगला बहन है भी राम राम सा। और देखो सा गर्मी है बात तो देखो
5: बेजही चेत की है भाई।
4: हाँ और देखो दिनों दिन आज की गर्मी बढ़ रही है नी, मेरे पीछे विशेषज्ञ भी कहवे और अपन जिका बुजुर्ग है माई थे वे भी आप कहवे है के हरा जिका वृक्ष है भी कटन सु भी ओ तापमान है वो वृद्धि हुआ इरमायने तापमान तेज हो गया है, तो क्यों ना आपा भया एक एक पेड़ लगावा आप।
5: बहुत ही अच्छा विचार है ओ,
4: है नी। हाँ देखो अब टाबरिया कह के सोशल मीडिया पर से इंगला समाचार भी आवे के जे हम की बिरखा वे नी, तो एक एक दो दो पेड़ आपा लगावा और हर मान को जे एक एक दो दो पेड़ लगाए नी तो देखो राजस्थान है नी ओ हरो भरो हो जासी और आज की तापमान की समस्या है जी आप आने वाली पीढ़ी है वह थोड़ा कम भुगत सी।
5: सच्ची बात क्यों कि भाई एक पेड़ है नी वो अनेक लोगों ने जीवन दिया करे।
4: बिल्कुल
5: है नी, तो फिर तो ये पेड़ रो जो को महत्व आप सोचा नी उनको कितो बढ़ जावे।
4: बिल्कुल सर, जिका पेड़ आप महित लगाया बियारो कहन के लाभ आपा ने मिल रही है और आपा अगर लगा सा पीढ़ी ने मिल सी है नी, तो ये वास्ते आप निस्वार्थ हो प्रार ओ काम कर सा तो देखो जगत रो भलो है और आप भी भलो है, तो पेड़ तो आपने लगावनी है और जिगा पेड़ खाली लगावनी को नहीं है ऐसा के
5: खासो ध्यान
4: भी रखना है के पेड़ लगाए एक फोटो खींची और सोशल मीडिया पर आज हमने एक वृक्ष लगाया है। नहीं सा लगाया नहीं भी रही, पूरी जिम्मेदारी भी आप नहीं उठावनी है। जब आप जिम्मेदार बन सा नहीं जद ये देखो जो पेड़ है नी वो पूरा पनपसी
5: भाई आज रो जो पेड़ है लगेड़ो वो आपने आने वाले टाइम रे मायने वो जीवन देसी।
4: बिल्कुल जीवन देसी सा, और साथ साथ देखो तापमान जो बढ़ रहे हैं तो जे काम नहीं है ना अवश्य घर से निकलिया ना, और जे काम है निकलना ही पड़े तो देखो कि खा पीर पानी पीर माथो ढकर ही आपने निकलनो है।
5: जी हरखू भाई,
4: हाँ छोटो सा काम है कि आप आपरो ध्यान रखा सा। देखो चौपाल में बैठा जाने आप अथाई तो कराई हाँ, और चौपाल में आप विशेषज्ञ भी पधारे
5: हाँ,
4: तो देखो आज बात कर ला पा भेड़ व बकरियां की प्रमुख बीमारियां बचाव और रोकथाम। हाँ तब देखो आज विशेषज्ञ के बारे में बता दूं, आज राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से पधारे हैं सहायक आचार्य डॉक्टर मनोहर सेन। डॉक्टर मनोहर जी आप रो चौपाल में घनो घनो स्वागत है और आपने भी करा राम राम सा
6: राम राम सा राम राम सा।
5: सेऊ पहली डॉक्टर साहब महाराज पशुपालक के उन्होंने आप आ बताओ कि भेड़ और बकरियां रा होड़ वाला प्रमुख रोग है बे किसे किसा है।
6: हरको भाई है बंसी भाई, भेड़ और बकरियों में बहुत सारे रोग होते हैं और उन रोगों के होने के कारण कई बार पशुपालकों को आर्थिक हानि भी होती है, पशु मर जाता है। तो एक तो रोग होता है फड़किया रोग, एक होता है गलगोटू रोग, खुर गलन रोग है, एंथ्रेक्स है और ब्रुसेलोसिस रोग है। इसके साथ साथ जैसे बकरी का प्लेग रोग है जिसे पीपीआर भी कहते हैं, चेचक रोग है, खुरपका मुंहपका रोग है, ब्लू टंग रोग है, ऐसे बहुत सारे और भी रोग हैं जो पशुओं में होते हैं, भेड़ बकरियों में होते हैं और कई बार अगर ध्यान नहीं देंगे तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है।
4: तो सेऊ पहला डॉक्टर साहब

0: अब हने वो बताओ कि फड़किया रोग कहीं है किया हुए और पशुपालक आपरी भेड़ और बकरिया ने इनसू किया बचावे।
1: हरको भाई और बंसी भाई, ये भेड़ बकरियों में जीवाणुओं से होने वाला बहुत ही खतरनाक रोग है जो क्लोस्ट्रीडियम नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु भेड़ बकरियों के आंतों में और ग्रास नल में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जैसे ही इस जीवाणु को अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, यह है वहां पर वृद्धि कर लेता है और वहां पर जहर स्रावित करता है। उस जहर से भेड़ बकरियों की कई बार मृत्यु हो जाती है। यह रोग मुख्य रूप से तब होता है जब पशु को अचानक से चारे में परिवर्तन कर दें, उसके खान पान में अचानक से परिवर्तन कर दें, या पशुओं को जो बरसात फसल कटाई के बाद में पशुओं को अपन खेतों में चरने के लेके जाते हैं, वहां पर उसके चराई का समय अगर ज्यादा हो जाता है तो पशु ज्यादा खा लेता है, या बरसात के बाद में जैसे बरसात होती है उसके बाद में हरी हरी घास उगती है, प्रोटीन युक्त घास उगती है, उसको अगर ज्यादा खा लेता है तो इस रोग के होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। और इस रोग में प्रमुख रूप से पहले अचानक से पशु को आफरा आता है, पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है, पशु के मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है और कई बार पशु की मृत्यु भी हो जाती है। और इस रोग में मुख्य रूप से जो स्वस्थ पशु होते हैं और जो मेमने होते हैं वो प्रभावित होते हैं
0: जी,
1: और अचानक से हरे हरे धस्त भी लग जाते हैं। तो इस रोग को पहचानने के लिए ये जो प्रमुख लक्षण बताए हैं मैंने, उनका ध्यान रखें और साथ में ही जो पशु बीमार हुआ है उसको अलग करके पशु चिकित्सक से उसका तुरंत उपचार करवाना चाहिए। साथ में ही 3 महीने से जो भी बड़े पशु हैं उन सबका बरसात से पहले टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए, और जो पशु जहां रहते हैं वहां की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रख करके आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं, क्योंकि ये रोग ऐसा रोग है एक बार आपके अगर फार्म पे आ गया है तो लगभग सभी पशुओं में होने की संभावनाएं रहती है। अच्छा। इसलिए विशेष ध्यान रख करके इसको इस रोग से अपने पशुओं भेड़ बकरियों को बचाया जा सकता है।
0: जी सर, छोटी छोटी बातें हैं पर महत्वपूर्ण बातें हैं।
2: बिल्कुल सर, डॉक्टर साहब गलघोंटू रोग है वो कहीं होया करे, इन रोग का ही मतलब है भेड़ बकरियां में भी और रोग होया करे क्या, और जे हुए तो पशुपालक आपरा पशुआ ने इन रोग सुखियां बचा सके।
1: बंसी भाई, जैसे फड़किया रोग है जो बरसात के समय होता है, वैसे ही गलघोंटू रोग भी बरसात के समय होता है। यह भी एक जीवाणु से होने वाला रोग है जो पास्चुरेला मल्टोसिडा नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु भी श्वास नली में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जैसे ही इस जीवाणुओं को भी अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, जैसे ही पशु को तनाव मिलता है, जैसे पशु को तनाव देते हैं तो ये रोग अचानक से हो जाता है। तनाव कैसे मिलता है, जैसे पशु को अपन ने लगातार पैदल चलाया, या एक जगह से दूसरे स्थान पर किसी गाड़ी में उसको ट्रांसपोर्ट किया, या पशुओं के चारे में अचानक से परिवर्तन हुआ, या मौसम में अचानक परिवर्तन हुआ, तो ये जीवाणु जो श्वास नली में उपस्थित है अचानक से वृद्धि कर जाता है और ये रोग कर देता है। इस रोग में सबसे पहले पशु को बुखार आता है, नाक से स्राव आने लग जाता है, गले पे और छाती पे सूजन आ जाती है, सूजन का हाथ लगाते हैं तो कुछ दर्द होता है, और सूजन आने से सांस नली पे जोर पड़ता है, उस जोर पड़ने के कारण से पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसके सांस के समय घर घर की आवाज आती है। इसलिए इस रोग को गलघोंटू रोग भी कहते हैं, और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए रोग से बचने के लिए सबसे पहले आपको जो बीमार पशु है उनको अपने बाकी स्वस्थ पशुओं से अलग करके उसका पशु चिकित्सक से उपचार करवाना चाहिए। यह रोग भी बरसात में होता है, तो बरसात शुरू होने से पहले, मानसून शुरू होने से पहले इसका टीकाकरण करवाना चाहिए सभी पशुओं में जो 3 महीने से बड़े पशु हैं, और जो बीमार पशु हैं उनको अलग करके इलाज करवाएं, और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मैं बार बार कह रहा हूं, साफ सफाई ध्यान रखेंगे तो इन रोगों से बचा जा सकता है। और एक टीकाकरण जो पशु स्वस्थ हैं उन सभी पशुओं में बरसात शुरू होने से पहले अप्रैल और मई में पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए।
2: भाई क्या उन्होंने मतलब वही अर्खो भाई कि भाई साफ सफाई री सावधानी और टीकाकरण की सजगता जरूरी बात है।
0: बिल्कुल सर, गलघोंटू के बाद में डॉक्टर साहब अब मैं आपसे जानकारी चाहूँ कि ब्रुसेलोसिस रोग क्या फैलिया करे और पशुपालक भाई किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ये रोग के प्रति।
1: ब्रुसेलोसिस एक बहुत ही खतरनाक रोग है, यह एक जूनोटिक रोग है। जूनोटिक का मतलब होता है कि ये पशुओं से मनुष्य में भी आता है, और ये एक जीवाणु है जो बकरियों और भेड़ों में होता है। ये मुख्य रूप से ब्रुसेला मेलिटेंसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में पशु की गर्भावस्था के अंतिम समय में, जो अंतिम महीने होते हैं 3 महीने, उनमें अबोर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, तथा जो जेर होती है जिसको अपरा भी बोलते हैं वो गिरता नहीं है, और बच्चा जाने से बदबूदार स्राव होता रहता है। जो नर पशु होते हैं उनमें अंडकोश में सूजन आ जाती है और जोड़ों में सूजन आ जाती है। ये जो तरल पदार्थ बाहर निकलता है या जो मरा हुआ बच्चा बाहर आया है और जो उसका प्लेसेंटा बाहर आया है उसके संपर्क में आने पे दूसरे पशुओं में भी ये रोग हो जाता है। उसके संपर्क में अगर कोई मनुष्य आता है या कोई जो पशुपालक उसको हैंडल करता है वो उसके संपर्क में आएगा उनमें भी ये रोग हो जाता है। तो इसमें विशेष सावधानी ये रखनी है कि जो भी जिस पशु में ये रोग होता है उस पशु को अलग कर दें, उसका उपचार करवाएं, और साथ में ही जो उसका बच्चा मरा हुआ है, जो उसका प्लेसेंटा बाहर आया है, और जो भी उसके आसपास जो भी खाद्य पदार्थ वगैरह जो उससे संक्रमित हुए हैं उन सबको गड्ढा खोद करके दबा देना चाहिए। और जो 4 से 6 महीने के जो बछड़ियां जो बकरियां होती हैं जो भेड़ होती हैं उनमें

0: टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए, इस प्रकार से बचा जा सकता है। और मनुष्य में भी विशेष रूप से जो इस भेड़ों के और बकरियों के संपर्क में आते हैं उनको अपने हाथ अच्छे तरह से पानी और साबुन से धो करके फिर दूसरे काम करने चाहिए।
1: बहुत ही बढ़िया जानकारी दी साहब।
2: डॉक्टर साहब, बकरियां रो प्लेग और पीपीआर रोग कहीं हुआ करे, इनसे बचाव रा उपाय भी आप महाराज जी का पशुपालक भाई हैं उन्होंने बताओ सर।
0: पीपीआर रोग एक जीवाणुओं से होने वाला अत्यधिक संक्रामक रोग है, इसको बकरी का प्लेग भी कहते हैं। इस रोग में पशु को अचानक से तेज बुखार आता है, जीभ पे, मसूड़ों पे और होठों पर छाले हो जाते हैं तथा मुंह से अत्यधिक लार गिरती रहती है और मुंह से बदबू भी आती रहती है और नाक से गाढ़ा स्राव आता है, वो स्राव पपड़ी के रूप में जम जाता है तो पशु को सांस लेने में भी दिक्कत होती है और बदबूदार दस्त भी लग जाते हैं। अच्छा। तो इसमें डिहाइड्रेशन से पशु की मृत्यु भी हो जाती है। अगर समय पर इसका उपचार नहीं किया गया तो ये रोग खतरनाक हो सकता है। इस रोग से बचाव के लिए सबसे पहले जो बीमार पशु हैं उनको अलग करके अलग से उसका पशु चिकित्सक से इलाज करवाना चाहिए और 3 से 4 माह के बीच के जो पशु हैं या 3 महीने से जो बड़े पशु हैं उन सब में उसका टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। मैं बार बार टीकाकरण पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये रोग जो है पीपीआर रोग है ये सर्दियों में होता है, तो सर्दी शुरू होने से पहले सितंबर अक्टूबर में इसके टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए और टीकाकरण से ही अपन रोग से पशुओं को बचा सकते हैं क्योंकि जब पशु बीमार हो गया है उसके बाद उसका इलाज करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि उपचार में भी पैसा लगता है, इसलिए टीकाकरण के द्वारा इन रोगों से पशुओं को या भेड़ बकरियों को अपन बचा सकते हैं, तो समय पर इसका टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए।
2: केवल मतलब वही है कि भाई सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो सावधानी से पहली रखनी जरूरी है।
1: बिल्कुल सा, और अब जी को बखत है वो है गीतड़ ले रो।
2: बिल्कुल सा, जरूरत है गीतड़।
1: बिल्कुल, तो आपसे सुन सा एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो।

0: पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा प्रायोजित धीणेरी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में नवीन जानकारी नवीन तकनीकें आप तक पहुंचाई जाती है। इसे सुने, इसका लाभ उठाएं और अपने पशुधन का उत्पादन बढ़ाएं।
1: इणबेला आप से सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति धीणेरी बातियां। और आज चौपाल में जानकर देवन सर उपाध्याय है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सु सहायक आचार्य डॉक्टर मनोहर सेन। और आज आप बातचीत करिया भेड़ और बकरिया की प्रमुख बीमारियां बचाव और रोकथाम।
2: हरखू भाई जिज्ञासा जी की जीवन ने कही है कि गति दिया करे।
1: बिल्कुल।
2: तो भाई देखो सर, जिज्ञासा ने बढ़ावन सारू डॉक्टर साहब सु आगलो सवाल मैं कर रहा, खुरपका मुंह पका रोग किया फैले और पशुपालक इन रोग सु पशुआ ने किन भात बचा सके।
3: खुरपका और मुंह पका भेड़ बकरियों में होने वाला प्रमुख रोग है और अत्यधिक संक्रामक रोग है और ये एक विषाणु से होता है। यह बीमारी मुख्य रूप से जो दो खुर वाले पशु होते हैं जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इनमें ज्यादातर होती है। इस रोग में सबसे पहले तेज बुखार आता है, मुंह पे, खुर पे और थनों पर और अयन पर और खुरों के बीच वाली जगह पर छोटे छोटे छाले हो जाते हैं जो फिर अगर खतरनाक होने पर घाव का रूप भी ले लेते हैं। पशु लंगड़ा करके चलता रहता है, मुंह से अत्यधिक लार गिरती रहती है और बकरियां व भेड़ लंगड़ा कर चलती है और मेमनों में इस रोग से मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी पशु बीमार हो तुरंत पशु चिकित्सक को बुला करके उसको अलग करके उसका इलाज करवाएं। दूसरा, साल में 2 बार इस रोग के टीके लगते हैं, एक तो अप्रैल मई में तथा दूसरा सितंबर अक्टूबर में, वो टीके अवश्य लगवाएं। और इसमें गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है FMDCP प्रोग्राम जिसमें साल में 2-2 बार ये टीके फ्री में लगाए जाते हैं। और साथ में जो पशु बीमार है उसको दलिया और मुलायम हरा चारा खिलाना चाहिए जिससे पशु उसको आराम से खा सके। साथ में प्रतिवर्ष सभी पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवाएं और ये भी ध्यान रखें जो घाव हो रखे हैं उन पे मक्खियां नहीं बैठने देवें, एंटीसेप्टिक क्रीम उस पे लगाएं और लाल दवा का हल्का घोल बना करके उसको धो करके एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं और मक्खियों पर नहीं बैठे, ये विशेष ध्यान रखे, नहीं तो वहां पर कीड़े पड़ जाते हैं और घाव अत्यधिक खतरनाक हो जाता है और फिर ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं रहती है।
1: बिल्कुल सर। और मक्खियां जद बैठ सी जद बाड़े रे मायने गंदगी हुए, साफ सफाई नहीं हुए, साफ सफाई नहीं हुए जने देखो कीट पतंगा जी कहने बहुत फैलिया करे और पशुओं वास्ते बहुत ही नुकसानदायक है। और साथ ही साथ अब डॉक्टर साहब मैं आपसे वो जानना चाहवा हाँ कि भेड़ बकरिया में संक्रामक रोग सु किया बच सका हाँ और इन्हें बाबत पशुपालकों ने कई कई सावधानियां रखनी चाहिए।
3: संक्रामक रोग काफी घातक होते हैं और कुछ पशुओं को बीमार होने पर यह फार्म के लगभग सभी पशुओं में होने की संभावना भी रहती है, तो कई बार पशु की इसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही पता लगे कि पशु बीमार हो रहा है उस पशु को अन्य पशुओं से अलग कर देना चाहिए, उसका खान पान, उसका पानी जो भी है सारा अलग करें। साथ में ही जो कुछ ऐसे रोग होते हैं जो मानसून में होते हैं और कुछ ऐसे रोग होते हैं जो सर्दियों में होते हैं, तो मानसून में जैसे मैंने बताया फड़किया रोग होता है, गलगोटू रोग होता है, तो इनके टीके लगते हैं, वो टीके मानसून शुरू होने से पहले अप्रैल मई में अवश्य लगाने चाहिए जिससे ये रोग होने की संभावनाएं कम हो जाती है। क्योंकि फड़किया रोग और गलगोटू रोग अगर आपके फार्म पे आ जाते हैं तो काफी नुकसान होने की संभावना रहती है। ऐसे ही कुछ रोग ऐसे होते हैं जो सर्दियों में होते हैं, जैसे चेचक रोग बताया मैंने, PPR रोग बताया, FMD बताया, खुरपका मुंह पका है, तो ये जो सर्दियों में होते हैं ज्यादातर होते हैं, लेकिन अभी आजकल मौसम परिवर्तन हो रहा है तो कभी भी होने की संभावना रहती है। इसलिए इनका भी सर्दियां शुरू होने से पहले सितंबर अक्टूबर में हमेशा टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। कुछ टीके गवर्नमेंट से फ्री भी अवेलेबल कराए जाते हैं, तो वो टीके आप जब भी आपके गांव में कोई पशु चिकित्सक आता है या कोई कंपाउंडर आता है तो उनसे टीके अवश्य लगवाने चाहिए। साथ में फार्म पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, साफ सफाई रखेंगे तो ये बीमारी दूसरे पशुओं में फैलने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। पशुओं को संतुलित और सुपाच्य भोजन देना चाहिए, आहार हमेशा उनको संतुलित देना चाहिए जो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा। और अन्य फार्म से जो खरीद कर पशु लाते हैं या अन्य जगह से कहीं से पशु खरीद कर लाते हैं उनको सीधा अपने पशुओं के साथ, पुराने पशुओं के साथ मिक्स नहीं करना है, मिलाना नहीं है, उनको अलग से रखें, 1 महीने तक उनकी निगरानी करें और जब 1 महीना हो जाए उसके बाद उसको अपने अन्य पशुओं के साथ मिलाना चाहिए। तो ये विशेष ध्यान रखें और अपने पशुओं को सर्दी से, गर्मी से और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना चाहिए जिससे पशुओं में रोग होने की संभावनाएं कम रहती है। तो इस प्रकार से इन बातों का ध्यान रख करके पशुपालक अपने पशुओं को बचा सकते हैं और अपनी आर्थिक नुकसान होने से बचा सकते हैं।
1: बहुत ही बढ़िया जानकारी दी सर।
2: 100 बात री एक बात के भी बचाव ही उपचार है।
1: बिल्कुल।
2: आप बताओ डॉक्टर साहब के भी बचाव ही उपचार होया करे और इन बाबत साफ सफाई रे साथ साथ टीकाकरण है वो जरूरी होया करे। तो टीकाकरण सारू महाराज

0: भाई आभार आप सुनियो ओ एक मीठो मीठो सो गीत अड़लो।
1: मैं प्रोफेसर राजेश कुमार धूड़िया, निदेशक प्रसार शिक्षा, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, आप सभी किसानों व पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और

0: पशुपालक भाई हैं उन्होंने किसी किसी जरूरी बात का ध्यान रखना चाहिए इन बाबत भी आप जानकारी दो सा।
1: अभी मैंने बताया कि बचाव ही उपचार है। बचाव का मतलब यह है कि रोग आना ही नहीं चाहिए अपने फार्म पे। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपना समय पर जो शेड्यूल है उसके अनुसार पशुपालकों को अपने भेड़ बकरियों का टीकाकरण करवाना चाहिए। टीकाकरण करवाते समय विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आप ये पशुपालक शिकायत करते हैं कि मैंने टीका लगवाए थे लेकिन फिर भी ये बीमारियां आ गई हैं। तो सबसे पहले जब भी टीकाकरण करें हमेशा स्वस्थ पशुओं में करना चाहिए।
0: अच्छा,
1: दूसरा, टीकाकरण से पहले पशुओं को कृमिनाशक दवा अवश्य पिलानी चाहिए, जिससे जो टीके लगाते हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है।
0: अच्छा,
1: टीका अच्छी तरह से काम करेगा। तीसरा, टीकों का रख रखाव हमेशा ठंडे तापमान 2 से 8 डिग्री पर ही करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अगर टीके को आपने गर्मी में रख दिया या बाहर रख दिया तो टीके खराब हो जाते हैं, वो काम ही नहीं करेंगे। और हमेशा उचित शीत श्रृंखला का पालन करना चाहिए, अर्थात टीकों को जब आप लगाएं और लगाने से पहले उनका अच्छी तरह से ठंडे तापमान पर रखना चाहिए, उसके बाद ही टीकों को लगाना चाहिए। और हमेशा पशुपालक को अपने जो टीके लगाते हैं उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए कि मैंने ये टीका कब लगवाया था, दूसरा टीका मेरे को कब लगवाना है। ये जब याद रखेंगे तो ये जो बीमारियां मैंने बताई हैं वो आने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और टीकाकरण भी आप जब करवाएंगे अगर इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो टीकाकरण भी फेल नहीं होगा, टीकाकरण भी काम करेगा और अपने पशुओं को आप बचा सकते हैं। टीका अगर समय पर नहीं लगवा पा रहे हैं फिर भी टीकों को लगवाना चाहिए क्योंकि बीमारी आने की संभावना आजकल कभी भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि कुछ दो रोग मानसून में होते हैं, अगर आप मानसून में अप्रैल मई में नहीं लगवा पाए तो अगर जून में या जुलाई में लगवाना तो लगवा लेना चाहिए, क्योंकि टीकों जब भी लगाते हैं तो उसके 21 दिन के बाद में टीका काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमेशा टीकाकरण अगर आप थोड़ा समय इधर उधर भी हो जाता है तो करवाना चाहिए।
0: पहली बात तो आई है कि भाई समय से लगाना चाहिए और जो नहीं लगा पावा तो भाई देखो सा 2-4 दिन ऊपर हो जाए तो चिंता की बात को नहीं, तुरंत लगा लेना चाहिए,
2: टीको लगवाना है
0: जरूरी है।
2: बिल्कुल सा। और अब थाने एक अच्छी बात और बताऊं कि देखो 18 मई 2026 राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय आप 17वां स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से मनायो और डॉक्टर साहब भी कार्यक्रम में शामिल आ।
1: हाँ हाँ, मैं भी इस प्रोग्राम का साक्षी बना हूँ और धूमधाम से हमारे विश्वविद्यालय ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है।
2: इन अवसर पर डॉक्टर सुमंत व्यास आप बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई थी, अब थारो मन उसी के हूँ भी सुनना चाहूँ। हाँ,
0: बिल्कुल बताओ
2: सर। तो आपने और आप जितना भी श्रोता है हमारा पशुपालक भाई है बीएनबी में मेरा जगह अंश है वे सुनावना चाहूं तो आपसे सुनो सा मेरा अंश।
3: जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सोचा गया था तब वो अकल्पनीय लगता था, उससे पहले शायद 1 या 2 विश्वविद्यालय ही पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविश्वविद्यालय के नाम पर अलग से स्थापित हुए थे और बहुत मुश्किल था कृषि के पारंपरिक क्षेत्र से अपने आप को अलग स्थापित करना, इस तथ्य के बावजूद कि कृषि के समग्र जो जीडीपी में योगदान है उसमें सबसे अहम योगदान पशुपालन का होता था और इस पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन का योगदान कृषि से भी ज्यादा होता था। मैं उन सभी को जिन्होंने प्रोफेसर गहलोत के नेतृत्व में संघर्ष किया, जिनमें प्रोफेसर टीके गहलोत, प्रोफेसर तंवर, प्रोफेसर कश्यप, प्रोफेसर मेहता, प्रोफेसर सिंह, प्रोफेसर राव, प्रोफेसर पुरोहित, ये सभी जो पीढ़ी थी इन्होंने उस वक्त जिस तरीके से काम किया तभी ये परिकल्पना साकार हो पाई। किसी भी अगर उच्च अधिकारी को अगर हम लेकर आए फार्म्स पे तो एक बड़े अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एक बेसिक प्रोडक्टिविटी का काम हो रहा है। बहुत कुछ और करने की जरूरत है फार्म्स में, हमारे कंट्रोलर साहब की टीम जो है बड़ी अच्छी रही और कुछ पैसा इस विकट स्थिति में भी हम लाने में कामयाब हुए हमारे फार्म्स को सुदृढ़ करने में। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में और बेहतर होगा। ये चीज़ हम हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारा क्लाइंट है उसी के कारण ही हमें टीम्स ने मेहनत करी तो ICR का जो प्रोजेक्ट है वो भी वापिस आया, रिवाइव हुआ। दूसरा प्रोजेक्ट भी जो बंद होने वाला था वापिस आया प्रोजेक्ट, एक और डिसहार्टेंड टीम थी उनकी भी स्पिरिट कुछ बढ़ी है और एक नया प्रोजेक्ट फार्म मशीनरी का भी सबमिट किया है। उम्मीद है कि वॉलंटरी सेंटर आना चाहिए, कुछ और रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी हमने सबमिट किए हैं NLM में और टीम ने जयपुर में भी बड़ा प्रयास किया उसमें और आगे भी प्रयास जारी है। अगर वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी आते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का तो मैं नहीं कहता पर

0: कंटिजेंसी में हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा और कुछ अच्छे रिसर्च आउटकम हमारे आएंगे। इस विश्वविद्यालय की जो टीम है उसने जो LST पे सर्वे करके जो रिजल्ट दिया, मेरे को भी लगता था कि ठीक है हम लोगों ने काम किया और अब भेज दिया और कर दिया, पर उसका इम्पैक्ट जब अब वहाँ से सुनने को मिलता है, उसका इम्पैक्ट जो है ये हुआ है कि जो वाइड स्प्रेड उसकी जो परमिशन थी LSD वैक्सीन की, उसके लिए वो स्टडी बहुत सहायक हुई है। मैं नहीं जानता कि वो क्रेडिट उस तरह का, उस जो उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी टीम थी जिसने उस कार्य को संपादित किया, वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा एग्जैक्ट क्रेडिट, पर अघोषित रूप से मुझे बहुत से लोगों ने उसका क्रेडिट इस विश्वविद्यालय को दिया और उसी का नतीजा है कि इस साल राजस्थान सरकार ने 22 करोड़ रुपए की LSD वैक्सीन खरीदने की अनुशंसा जारी की है। ये एक विश्वविद्यालय को, हमारी टीम को बहुत बड़ा क्रेडिट मेरी नज़रों में है। जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत से बच्चों को TOEFL GRE क्या होता है ये भी पता नहीं होता। कोशिश है, मेरी प्रयास है कि आप लोगों में से भी लोग स्कॉलरशिप्स लेकर बाहर जाएं। क्लिनिक्स हमारे इस विश्वविद्यालय की शुरू से रीढ़ की हड्डी रही है। इस जो झंडा ने हमेशा हमारे विश्वविद्यालय को एक नई और अच्छी ऊंचाइयां, प्रोफेसर रतन सिंह से लेकर आज तक हमेशा इस क्लिनिक का जो है बड़ा नाम रहा है। एक चीज जरूर साथ में रखें कि हसरतें ख्वाहिशें बहुत हों पर जरूरतें कम रखें। अगर आपको बिना AC के भी रहने दिया जाए तो आपको एक क्षण भी परेशानी ना महसूस हो, इस तरह की अगर जिंदगी अपन बना सकें तभी हम सही मायने में पशु चिकित्सक कहला सकेंगे। धन्यवाद।
1: वाह भाई अरखू भाई, देखो सा सुमंत व्यास धीरज का उद्बोधन सुना नहीं, मैं इं लगे कि भाई देखो सा जन जन सु जरूरी बातें बता रहा था।
2: बिल्कुल सर, अब देखो सा वक्त इशारो करण लग गया है
1: और उन इशारे ने तो भाई देखो सा समझते थका, समय की कदर सगला ने करनी चाहिए
2: करनी चाहिए। तो मैं आपने बता दू सा, आज चौपाल रे मायने राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से पधारिया सहायक आचार्य डॉक्टर मनोहर सेन और आज आप बातचीत करी भेड़ और बकरियां दी प्रमुख बीमारियां बचाव और रोकथाम विषय पर। डॉक्टर मनोहर सेन साहब आप चौपाल में पधारिया, हमारे पशुपालकों ने इतनी बढ़िया महत्व जानकारी दी, इन सार उम्मीद देवा आपने धन्यवाद और करा
3: राम राम, राम सा
4: राम राम सा।
5: तो आज ही आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति धीनेरी बातिया कार्यक्रम रहा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। तो सा हमें महने आज्ञा दिराओ सा घणान घणा राम राम सा।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
7: काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुन्ना उतार किया बैठा हो।
8: काई करूँ दाबू बेटा, भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और विरोध जीसोरो भी कौन।
7: आप सुनो आकाशवाणी सु कार्यक्रम धीरे भी बातिया। काकी सा ई कार्यक्रम सुनन सु मिलसी पशुपालन सु जुड़ी सबली समस्या रो समाधान।
9: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीरे बातिया।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम धीण री बाता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान वेटरनरी एंड एनिमल साइंस बीकानेर। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाद

0: संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। सबसे पहला गीत इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए चुना है फिल्म भेड़िया से, जिसे गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने।

फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। अगला गीत आपके लिए चुना है फिल्म जरा हटके जरा बचके से। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह और सचिन जिगर ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम यहीं तक। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर अब से कुछ ही पलों में आपको सुनवाए जाएंगे समाचार। पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे, उसके बाद जिले की चिट्ठी और उसके बाद प्रसारित किए जाएंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से किया जाएगा। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल से प्रदेश दौरे पर, राजस्थान को कई नई रेल सुविधाओं की सौगात देंगे। राज्य में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर वार्डों के पुनर्गठन और मतदाता सूची का काम पूरा हुआ। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी, लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए मनाए गए गोडावण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित और कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में चयन।

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल से दो दिन के प्रदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और प्रदेश को नई रेल सुविधाओं की सौगात देंगे। रेल मंत्री कल सुबह जोधपुर पहुंचेंगे, जहां वे विभिन्न रेल सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: रेल मंत्री के इस दौरे की एक बड़ी सौगात जोधपुर दिल्ली वंदे भारत की क्षमता में होने वाला रिकॉर्ड बढ़ोतरी के रूप में मिलने वाली है। 22 मई से ये ट्रेन 20 कोच के साथ दौड़ेगी, जिससे इसकी क्षमता लगभग 3 गुना बढ़कर 1440 सीटें हो जाएगी। भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए मेंटेनेंस डिपो के फेज 2 और लगभग 400 करोड़ की लागत से नए मेगा कोचिंग टर्मिनल की स्थापना की घोषणा की जाएगी। समारोह में साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जैसलमेर तक विस्तार किया जाएगा। ट्रेन के जैसलमेर तक विस्तार से पर्यटन नगरी को गुजरात से सीधी सुपरफास्ट ट्रेन सुविधा मिलेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: जोधपुर से श्री वैष्णव जालौर जाएंगे, वहां वे भुज नई दिल्ली ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। ये रेलगाड़ी राज्य के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इसके बाद उनका पाली जाने का कार्यक्रम है, जहां वे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे पुनर्विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। साथ ही वे लघु उद्योग भारती के नए भवन का लोकार्पण भी करेंगे। रेल मंत्री शनिवार को जयपुर में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके बाद वे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के तहत डूंगरपुर की धम्बोला ग्राम पंचायत में ग्रामीणों से संवाद का कार्यक्रम है। इससे पहले उन्होंने बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र जनों तक पहुंचाने के लिए समर्पित भाव से काम करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अवैध धर्मांतरण करवाने वाले तथा राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने नहरों और तालाबों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने और पानी का सदुपयोग करने का आह्वान किया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कुशलगढ़ के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गिरीश भाभोर और बांसवाड़ा नगर परिषद के आयुक्त दुर्गेश सिंह रावल को तत्काल एपीओ करने के आदेश जारी किए। राज्य में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर वार्डों के पुनर्गठन और मतदाता सूची का काम पूरा कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज झुंझुनू के नारनोद गांव में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्री पटेल ने अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ही राजनीतिक आरक्षण दिया जाएगा।
2: हमारी सरकार आने के बाद आयोग का गठन किया है। आयोग अपनी कार्रवाई तीव्र गति से कर रही है और जब आयोग की रिपोर्ट आएगी सरकार चुनाव कराने को तैयार है। संवैधानिक बाध्यता के तहत जब तक ओबीसी वर्ग के संबंध में आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक चुनाव कराया जाना शायद चुनाव आयोग।
0: राज्य मानवाधिकार आयोग ने नागौर जिले में खनन श्रमिकों में सिलिकोसिस बीमारी और समुचित चिकित्सा सुविधाओं के अभाव पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जी आर मूलचंदानी ने नागौर के जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य खनन अभियंता को नोटिस जारी कर अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने अधिकारियों को सभी खनन क्षेत्रों का भौतिक निरीक्षण करने, श्रमिकों की सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने और गीली खनन प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग ने सिलिकोसिस रोगियों के इलाज के लिए हर महीने विशेष चिकित्सा शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज लोक भवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। राज्यपाल ने अधिकारियों से आम जनता के प्रति

0: प्रति संवेदनशील होकर काम करने का आह्वान किया। श्री बागड़े ने जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से लेने की बात कही, साथ ही गरीब तथा वंचित लोगों के कल्याण के लिए काम करने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का कहर जारी है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से हाल बेहाल है। लगातार पड़ रही गर्मी से आम जीवन के साथ ही पशु पक्षी भी परेशान नजर आ रहे हैं। बाड़मेर में दिन भर धूल भरी आंधी चलने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। श्रीगंगानगर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तेज गर्मी के मद्देनजर आमजन से विशेष एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में ज्यादातर स्थानों पर तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। 45.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच विभाग ने कल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना जताई है। इससे तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से पहली बार आज गोडावण दिवस मनाया गया। जैसलमेर में आयोजित कार्यक्रम में वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वन विभाग और स्थानीय निवासियों की कोशिशों से इस विलुप्त प्राय पक्षी इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि इन साझा प्रयासों और गोडावण प्रजनन केंद्रों के माध्यम से इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
1: और जो मुझे जानकारी दी गई है, इस अपने नेचुरल सोर्स में लगभग 130 गोडावण पक्षी हमारे पास हैं और 87 गोडावण पक्षियों को हमने चूजे पैदा करके कृत्रिम तरीके से तैयार किए हैं। आने वाले समय में जो हमारा राजकीय पक्षी है गोडावण, उसके संरक्षण में वन विभाग मुस्तैदी से काम करेगा। गोडावण की संख्या में वृद्धि होगी और पर्यावरण के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका वन विभाग और हमारा गोडावण पक्षी और वन विभाग देने का।
0: वन मंत्री ने गोडावण प्रतिमाओं का अनावरण भी किया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद श्री शर्मा ने सम स्थित गोडावण ब्रीडिंग सेंटर और डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का दौरा कर गोडावण संरक्षण के लिए चल रहे प्रयासों का जायजा लिया। कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का चयन आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। वे स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होने वाले इन खेलों में 70 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अरुंधति कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाली राजस्थान की पहली महिला मुक्केबाज बन गई हैं। इससे पहले वे बॉक्सिंग वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके लिए अरुंधति को बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया संदेश में श्री शर्मा ने कहा कि उनकी ये उपलब्धि युवा शक्ति के लिए प्रेरणा है। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ की ओर से दृष्टि बाधित शतरंज प्रतियोगिता कल से शुरू होगी। जयपुर स्थित कल्याण संघ परिसर में होने वाली इस प्रतियोगिता में वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्ग दो वर्गों में होगी। 3 दिन की स्पर्धा में लगभग 65 दृष्टि बाधित खिलाड़ी भाग लेंगे। जयपुर के बिचून औद्योगिक क्षेत्र में माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। श्री यादे माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से माटी कलाकारों के लिए आधुनिक तकनीक के माध्यम से नए रोजगार के द्वार खुलेंगे। राज्य में माटी कला के सभी कलाकारों कामगारों के लिए शिविर लगाकर आर्टिजन कार्ड बनाए जाएंगे। श्री टाक ने बताया कि बजट घोषणा के तहत 5,000 बिजली से चलने वाले चाक और मिट्टी गूंधने की मशीनों का वितरण किया जाएगा। राज्य सरकार और गूगल इंडिया की ओर से आज जयपुर में बिल्ड विथ एआई कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 100 से अधिक स्टार्टअप संस्थापकों, छात्रों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें गूगल के अत्याधुनिक एआई टूल्स का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के शासन सचिव डॉक्टर रवि कुमार सुर

पुर ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं और स्टार्टअप्स को विश्व स्तरीय तकनीकी मंच उपलब्ध कराना है। उन्होंने सरकारी सेवाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की आमजन तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एआई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल से प्रदेश दौरे पर, राजस्थान को नई रेल सुविधाओं की सौगात देंगे। राज्य में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर वार्डों के पुनर्गठन और मतदाता सूची का काम पूरा हुआ। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी, लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए मनाए गए गोडावण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। और कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में चयन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले में राष्ट्रीय डिजिटल जनगणना प्रक्रिया के पहले चरण में मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है। 1 मई से 15 मई तक नागरिकों ने ऑनलाइन स्वगणना की, वहीं 16 मई से जनगणना कर्मियों ने घर घर जाकर मकानों की गिनती शुरू कर दी है। ये 14 जून तक चलेगी। इससे पहले मास्टर ट्रेनर्स को CMMS पोर्टल और मोबाइल ऐप के इस्तेमाल संबंधी प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही जिला प्रशासन ने डिजिटल जनगणना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए। दौसा लोकसभा क्षेत्र में रेलवे फाटकों पर लगने वाले लंबे जाम की समस्या से जल्दी ही राहत मिलने वाली है। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से रेलवे की ओर से 31 नए रेलवे अंडरपास RUB स्वीकृत किए गए हैं। इन अंडरपासों के निर्माण से दौसा शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैफिक दबाव कम होगा, साथ ही रेलवे फाटकों पर रोजाना लगने वाले जाम से भी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। शहर के सबसे व्यस्त मंडी फाटक, जड़ाव फाटक और छतरी वाली ढाणी फाटक पर अंडरपास निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा खोर्रा, निमाली, जोपाड़ा, कोलवा, मानोता, भजड़ा दुब्बी, दयालपुरा बस्सी, हंसमहल बस्सी और थानागाजी के टहला बाईपास रोड फाटक सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों को भी योजना में शामिल किया गया है। क्षेत्र में RUB बनने से स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों सहित आमजन को फायदा मिलेगा। लंबे समय से स्थानीय लोग रेलवे फाटकों पर जाम की समस्या से परेशान थे, जिसके कारण कई बार एम्बुलेंस और जरूरी सेवाएं भी प्रभावित होती थीं। रेलवे के इस फैसले को क्षेत्र के विकास और यातायात सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से जिले में भी ग्राम रथ अभियान चलाया गया। पिछले दिनों ये ग्राम रथ जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे। इनके जरिए किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही कला जत्थे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भी जागरूकता की अलख जगाई गई। जिले की लालसोट कृषि उपज मंडी इन दिनों सौंफ की खुशबू से महक रही है। मंडी में सौंफ की आवक अपने पूरे परवान पर पहुंच चुकी है। इन दिनों लालसोट कृषि उपज मंडी में सौंफ की 3000 से अधिक बोरी की आवक बनी हुई है। इसके चलते पूरी मंडी में दिन भर जगह जगह सौंफ की ढेरियां लगी हुई दिखाई देती हैं और पूरा मंडी क्षेत्र सौंफ की खुशबू से महकता रहता है। लालसोट मंडी की सौंफ की खुशबू और क्वालिटी ने देश के साथ विदेशों तक में भी अपनी पहचान बना ली है और विदेशों से भी लगातार डिमांड होने के चलते मंडी का कारोबार काफी फल फूल रहा है। कुल मिलाकर ये मंडी सौंफ व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र बन चुकी है और अब इसका विस्तार अन्य बड़े व्यापारिक केंद्रों के समकक्ष माना जा रहा है, जिससे इसका महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। हालांकि मौसम में पिछले दिनों उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले भर में धूल भरी आंधी चली, वहीं कुछ गांवों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई और ओले गिरे।
कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। हालांकि थोड़ी राहत के बाद उमस और तेज गर्मी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। तेज गर्मी को देखते हुए लोगों को लू और तापघात से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। चिकित्सकों ने ठंडे पेय पदार्थों का सेवन अधिक करने की सलाह दी है। उन्होंने डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए सर ढककर ही बाहर निकलने और

0: और प्रचंड गर्मी में बच्चों, बुजुर्गों तथा गर्भवती महिलाओं से विशेष सावधानी बरतने को कहा है। भीषण गर्मी के कारण सड़कों और बाजारों में आवाजाही कम देखी जा रही है। दिन के समय पैदल राहगीर पेड़ों और टीन शीट के नीचे छाया तलाशते नजर आ रहे हैं। प्रचंड गर्मी के कारण विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से लोगों की सुविधा के लिए कई स्थानों पर प्याऊ भी लगाई गई है। पिछले दिनों जिले में विश्व पृथ्वी दिवस पर विभिन्न संस्थाओं, संगठन, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक समूहों द्वारा कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के अवसर पर जिले में अनेक स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम रखे गए। वहीं पुलिस प्रशासन ने संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए निरंतर निगरानी भी रखी। इसके साथ ही दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काल प्रदेश का दौरा सारू पधारेला, राज्य न नुवी रैला री सौगात देवेला। प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव जुड़ियो वार्ड पुनर्गठन और वोटर लिस्टों काम पूरो फियो। राज्य में जबरदस्त तावड़ो, लोगों सागर जिनावर और परिंदाई बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण न बचावण सारू आज गोडावण दिवस मनाई चियो। और कोटारी मुक्केबाज अरुंधति चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 सारू भारत री टीम में चुनी ची। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रो प्रदेश रा दो दिन रा दौरा सारू काल पधारण रो कार्यक्रम है। वे काल सवारे जोधपुर माए न्यारी न्यारी रेलगाड़ियां री शुरुआत करेला। पेश है माना खबर नवी श्री रपट।
2: रेल मंत्री के इस दौरे की एक बड़ी सौगात जोधपुर दिल्ली वंदे भारत की क्षमता में होने वाला रिकॉर्ड बढ़ोतरी के रूप में मिलने वाली है। 22 मई से ये ट्रेन 20 कोच के साथ दौड़ेगी, जिससे इसकी क्षमता लगभग 3 गुना बढ़कर 1440 सीटें हो जाएगी। भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए मेंटेनेंस डिपो के फेज 2 और लगभग 400 करोड़ की लागत से नए मेगा कोचिंग टर्मिनल की स्थापना की घोषणा की जाएगी। समारोह में साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जैसलमेर तक विस्तार किया जाएगा। ट्रेन के जैसलमेर तक विस्तार से पर्यटन नगरी को गुजरात से सीधी सुपरफास्ट ट्रेन सुविधा मिलेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार जोधपुर।
1: जोधपुर रेल मंत्री रो जालौर जावन रो कार्यक्रम है। वह भुज नई दिल्ली रेलगाड़ी ने रवाना करेला। आगाड़ी प्रदेश का कई स्टेशनों वहती निकलेला। इन पाछा श्री वैष्णव पाली माए अमृत भारत स्टेशन योजना रा तेज चाल रहा कामा रो जायजो लेवेला। रेल मंत्री रो थवर ने जयपुर माए राख्या जावन वाला रोजगार मेला माए केंद्र सरकार रा न्यारा न्यारा दफ्तरा माए नुवी नौकरी लाग्या कर्मचारियां ने नौकरी लागण रा कागजात देवन रो कार्यक्रम है। इन पाछे व इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी कंडक्टर उद्योग जुड़िया नुमाइंदा सा गई बातचीत करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रो ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम रा तहत आज डूंगरपुर जिला री धम्बोला ग्राम पंचायत माए गांव वाला सागे बातचीत रो कार्यक्रम है। इनु पहली वे बांसवाड़ा माए अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। श्री शर्मा गैर कानूनी तरीकाओं धर्म बदली करावन वाला और सियासी हलचल माए शामिल हुए वाला सरकारी कर्मचारियों रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई रा हुक्म दीना। मुख्यमंत्री नहरा और तलावां री साफ सफाई सागे माही नदी रा पानी री हर एक बूंद काम लेवन सारू कहो। वे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान माथे जोर देता थका पानी रा हलका माए खुद रे पान उबो वेवन न सब ऊंचो बतायो। मुख्यमंत्री कुशलगढ़ रा खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गिरीश भाभोर और बांसवाड़ा नगर परिषद रा कमिश्नर दुर्गेश सिंह रावल ने तुरंत एपीओ करण रा हुकम ये दीना। राज्य में स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं रा चुनाव सारू वार्डा रा पुनर्गठन और वोटर लिस्ट तैयार करण रो काम पूरो फेंक्यो है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल आज झुंझुनू जिला रा नारनोद गांव माए खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी। वे कहो कि चुनाव री तैयारी पूरी कर ली रीची है। श्री पटेल अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण रा बारा माए कहो का सुप्रीम कोर्ट रा हुकम

0: केंद्रमाएं शिखावण ले रही है। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ री ओरों दृष्टि बाधित शतरंज होड़ काल शुरू फैला। जयपुर रा कल्याण संघ परिसर माए फेवन वाली 3 दिन री ई होड़ माए दृष्टि बाधित 65 खिलाड़ी शामिल फैला। आहोड़ वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्ग माए फैला। जयपुर रा बिचून औद्योगिक हल्का माए माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनायो जावेला। श्री यादे माटी कला बोर्ड रा अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक आज जयपुर माए खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी। वह कहो कि इनो माटी कलाकारा सारू नुवी तकनीक रे जरिए नुआ काम धंधा रा मौका बनेला। श्री टांक कहो कि राज्य माए माटी कला रा सगला कलाकारा और कामगारा रा आर्टिजन कार्ड बनावण सारू बोर्ड री ओर शिविर लगाया जावेला। वे बतायो कि प्रदेश में बिजली चालन वाला 5000 चाक और मिट्टी गूंदवारी मशीना दी जावेला। इस आगे मौजूदा साल में माटी कलारा 100 प्रशिक्षक तैयार करावण तय करी चियो है। राज्य सरकार और गूगल इंडिया री ओर आज जयपुर में बिल्ड विद एआई कार्यशाला राखी जी। इनमें नुआ एआई टूल्स री सिखावण दीरी जी। ई मौके सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग रा शासन सचिव डॉ रवि कुमार सुरपुर सरकारी सेवावां और जनतारा भलारी योजनावारी पात्र लोगां ताई बेहतर पहुंच तय करण सारू एआई तकनीक रा इस्तेमाल माथे जोर दीनो। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में आए उम्मीद नेटवर्क देश ने सौंपियो। ई मौके वे कहो कि जनता सारू स्वास्थ्य और जुड़ी सेवावां सस्ती और आसान बनावण माथे केंद्र सरकार रो खास ध्यान है। डॉ जितेंद्र सिंह कहो कि उम्मीद पहल हाल ताई 3 लाख लोगों ने फायदो मिल चुकी है। आ पीढ़ी दर पीढ़ी वेवन वाली बीमारियां आगीकरण सारू जैव प्रौद्योगिकी विभाग री राष्ट्रीय पहल है। इना तेत आम बीमारियां रा इलाज राय रोकथाम और जनता रा स्वास्थ्य रे बारा माए जाग जगावण माथे खास ध्यान दियो जा रियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई तई राय दे सको हो। नंबर ओजू सुन ली राव सा 1800117800। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ली राव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काल प्रदेश रा दौरा सारू पधारेला। राज्य ने नुवी रेलां दी सौगात देवेला। प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव जुड़ियो वार्ड पुनर्गठन और वोटर लिस्टां रो काम पूरो भयो। राज्य में जबरदस्त तावड़ो लोगां सागे जिनावर और परिंदाई बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण ने बचावण सारू आज गोडावण दिवस मनाई चियो। और कोटारी मुक्केबाज अरुंधति चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 सारू भारत री टीम माए चुनी ची। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं ग्रामीण परिवारों का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम खेती और घर।

खेती और गरुण वाले सभी किसान भाई बहनों ने भैरा भाई और सरजू भाई सारो राम राम सा। देखो सा, खेती और घर कार्यक्रम रो टाइम वे गयो और सबने पता हो कि खेती और घर एक अशो कार्यक्रम है जिनमें माँ खेती बाड़ी री बात करा, तरह तरह री योजना री बात करा, मौसम री बात करा, कई स्वास्थ्य संबंधी बात करा, पशुधन री बात करा, बीजा री बात।

0: करा और अनेक योजना की बात करा और लाल लारे प्यारे प्यारा राजस्थानी लोकगीतों भी मनोरंजन करावा। तो एक हिसाब को देखियो जा तो खेती और घर एक संपूर्ण कार्यक्रम है। अब देखो आज मैं कार्यक्रम में ने चौपाल री बात में यो लाया हाँ कि भाई ग्रामीण उद्यमिताओं आत्मनिर्भरता किस तरह है। तो देखो आजकल आप देखो ग्रामीण उद्यमिता रो अर्थ कई गाँव में उपलब्ध स्थानीय संसाधन पारंपरिक कौशल कृषि उत्पाद रो उपयोग करने नया व्यवसाय स्थापित करना है। अब आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने आत्मनिर्भर भारत रो मूल आधार है जो कि गाँव शहरी और पलायन ने रोके ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने मजबूत भी करे। अब एक ये कि ग्रामीण क्षेत्र में ने उद्यमशीलता ने बढ़ावा देवर वाते घणाहारा अच्छा अच्छा महत्वपूर्ण सरकारी और वित्तीय उपाय किदा जा रहा है। वणी मैंने सबू जो प्रमुख व्यावसायिक अवसर है वणी मैंने आप बात करें तो खाद प्रसंस्करण है यानी कि फल सब्जियां मसाला और अनाज रो प्रसंस्करण करने बना रहे ब्रांडेड उत्पादन के रूप में बेचनो हस्तशिल्प और हथकरघा रो यानी कि स्थानीय कला बांसरी वस्तुआ कढ़ाई पारंपरिक वस्तुओं रो निर्माण करना है। डेयरी मशरूम उत्पादन और मधुमक्खी पालन कृषि रहते आते अतिरिक्त आय रा साधन है। ग्रामीण पर्यटन री बात करा तो गांववारी संस्कृति और प्राकृतिक परिवेश रो अनुभव करावर वाते आप देखो कि इको टूरिज्म रो करनो है। अंडे अलावा कई सरकारी सहायता री बात करा और योजना री बात करा।
1: बिल्कुल सा। तो देखो सा कि जटे योजना री आपा बात करा तो अणी रे मैंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम रे माध्यमों ग्रामीण युवा जत्रा भी है वणारे वास्ते महिला ने छोटा उद्योग शुरू करवारे वास्ते सब्सिडी युक्त ऋण प्रदान करियो जा रो है। जटे लारे लारे आपा देखा कि लखपति दीदी योजना री बात करा तो ग्रामीण महिला ने स्वयं सहायता समूह जोड़ी ने सूक्ष्म उद्यम शुरू करवारे वास्ते वित्तीय और तकनीकी सहायता भी दी जा रही है सा। और देखो सर नाबार्ड री बात करा तो नाबार्ड द्वारा ग्रामीण युवा रे वास्ते विशेष ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि वहां ने स्थायी स्वरोजगार मिल सके सा।
0: बिल्कुल सर देखो अणि विषय में आप और भी बात करांगा लेकिन आपको तो एक अच्छो सो राजस्थानी लोकगीत सुनावा सा।
1: हाँ सा।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो देखो सर, आप बात कर रहे हैं ग्रामीण उद्यमिता रही, तो कई एक गाँवों में ने आर्थिक और सामाजिक कायाकल्प मूल मंत्र योजना से और अंडे अलावा स्थानीय संसाधन और पारंपरिक कौशल और कृषि उत्पाद के जरिए अगर आप बात करें तो छोटा व्यवसाय स्थापित करने ग्रामीण भारत आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके।

0: यो पलायन रोके और स्थानीय स्तर पे आप देखो कि रोजगार का नए अवसर भी पैदा करे सा।
1: बिल्कुल हाँची बात कह रहा हो सा भेरा भाई। देखो आत्मनिर्भरता रे प्रमुख क्षेत्र री जटे बात करा तो खादी और ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, जैविक खेती, मधुमक्खी पालन और मशरूम री खेती, जने लारे हस्तशिल्प और हथकरघा, स्थानीय कलाकृति, कपड़ा, पारंपरिक उत्पाद और निर्माण, अणिरे महीने महिला सशक्तिकरण जिसर के वहाँ आपा स्वयं सहायता समूह रे जरिए महिलाएं जो है वे आत्मनिर्भर बन रही है। तो अनिरे महीने सरकार द्वारा

0: अणी रे महीने महिला सशक्तिकरण जी सर केवा आपा स्वयं सहायता समूह रे जरिए महिलाएं जो है वे आत्मनिर्भर बन रही है। तो अणी रे महीने सरकार द्वारा प्रमुख सहायता और योजनाएं भी है सा।
1: बिल्कुल सही बात है सा। अणी महीने लखपति दीदी योजना है यानी कि ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ावर वाते वणा रे उद्यमी बढ़ावर वाते चलाई जा रही है। अभी देखो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की बात करा तो छोटा उद्योग शुरू करवाते सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर दी जाएगी।
0: देखो सा जटे दीनदयाल अंत्योदय योजना री आपा बात करा भेरा भाई और अपना किसान भाई बहना ने आपा बतावा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रे महीने ग्रामीण परिवार विशेषकर महिला ने आजीविका रा अवसर दिया जावे है। आगे रा रास्ता गांव रा आर्थिक विकास रे वास्ते जरूरी है कि स्थानीय उत्पादारी मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जावे। ग्रामीण उद्यमिया ने समय पे ऋण डिजिटल मार्केटिंग रो प्रशिक्षण और उचित तकनीक मिले तो वे एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था रो निर्माण करी सकेगा सा।
1: बिल्कुल सही बात है सा। तो कुल मिलाइन आप देखो कि ग्रामीण उद्यमिता रो जो महत्व है वही मैंने आपा बात की दी रोजगार सृजन है संसाधन रो बिल्कुल सही उपयोग हुए पलायन पे रोक लागे और आत्मनिर्भरता रे प्रमुख क्षेत्र में अगर आप बात करें तो खादी और ग्राम उद्योग रो बढ़ावा मिले हस्तशिल्प और हथकरघा और महिला सशक्तिकरण ने भी बढ़ावा मिले और योजना तो ही इसी सा कि लखपति दीदी योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है और दीनदयाल अंत्योदय योजना है आना चीजों का ही आप मानने चलो ग्रामीण उद्यमिता आत्मनिर्भरता निश्चित रूपों बढ़ेगा सा।
0: बिल्कुल सा देखो सा भेरा भाई बहुत ही बढ़िया जानकारी जो है यहाँ पर किसान भाई बहना ने दीदी सा और कार्यक्रम रे माध्यमों देखो कि किसान भाई बहना रो मनोरंजन कराना भी जरूरी वे तो भेरा भाई आप केवो तो एक राजस्थानी गीत होना ही ने मनोरंजन करावा सा।
1: बिल्कुल कराओ सा।

0: तो भेरा भाई
1: जी सा
0: देखो सा बहुत ही प्यारो सो राजस्थानी गीत जो है अपना किसान भाई बहना ने आपा हुनायो सा। और देखो कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और अभी जानकारी करावा मौसम विभाग री। तो देखो मौसम विज्ञान विभाग जयपुर प्राप्त सूचना रे आधार पे आगामी दिना में मौसम शुष्क रहवारी संभावना है सा। हवारी गति री जटे बात करा तो 2-6 किलोमीटर प्रति घंटा रे वेग चालेगा और दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम तक चालवारी संभावना है सा। अने इस लारे आपा अधिकतम तापमान री बात करा तो 42-44 और न्यूनतम

0: तापमान की बात करा तो 2527 रेवा री संभावना है। और अणीरे लारे लारे ही जटे आपा सापेक्ष आर्द्रता की बात करा तो न्यूनतम 22 और 34 रेवा रे, अधिकतम 9-12% रेवा री संभावना है सा।
1: बिल्कुल बढ़िया बात है सा। और अगर अपन सामान्य बात करें तो मिट्टी में नमी बनाए रहे वाते आप देखो कि पत्तियां रे बीच में सूखी घास या फसल रे अवशेष रो उपयोग करना है। अब कई गर्म हवा रे बचाव रे वाते खेता रे सीमा पे विंड ब्रेक स्ट्रिंग या जूट री जाली जरूर लगानी चाहिए सा।
0: बिल्कुल सा। जटे आप गेहूं री बात करा तो अनाज ने भंडारण में राखो पेला भंडार घर री अच्छी तरीकों सफाई करी लेनी है। अनाज ने हाउ तरीकों सुखाई लेनो है। कूड़ा कचरा ने जलाई ने या दबाई ने नष्ट करी देना है। दाणा में नमी 12% तो ज़्यादा नहीं वेणी चावे। भंडार घर री छत दीवार और फर्श पे एक भाग मेलाथियान 50 EC ने 100 भाग पानी में मिलाई ने वणीरो छिड़काव करी देनो है। अगर पुरानी बोरियां जो है वे प्रयोग करनी पड़े तो वणा ने एक भाग मेलाथियान और 100 भाग पानी रा घोल में 10 मिनट तक भिगोई ने छाया में जरूर सुखाई लेनी है सा।
1: बिल्कुल सा। और मूंगरी बात करा तो सिंचाई यानी कि अणी टाइम मूंगरी फसल फूल आवा और फली वणवारी अवस्था में है तो अणी अवस्था में नमी रे कमी रे कारण पैदावार घट सके। अंडे बाते हल्की हल्की सिंचाई जारी रखनी है। और गर्म मौसम में आप देखो कि थ्रिम्स रो प्रकोप बढ़ जावे। अंडे बाते नियमित रूप निगरानी करता रहो सा।
0: देखो सा नहीं लारे जटे आप कपास की बात करा तो देखो कपास अणी सप्ताह में किसान कपास री बुवाई करी ने पछी खेत ने तैयार करी लेने और गुणवत्तापूर्ण प्रमाणित बीज कणी विश्व जो स्रोत है वट्यूस खरीदनो है। जटे आप बेल वाली सब्जियां री बात करा भेरा भाई तो मिट्टी रे महीने पर्याप्त नमी बनाया राखवारे वास्ते फसल ने नियमित रूप हल्की सिंचाई देनी है। बेला ने सहारो देनो है। फलारी मक्खियां या पाउडरी मिड्यूनरी नियमित रूप निगरानी करी लेनी है। और अगर जरूरत पड़े तो अनुशंसित कीटनाशक का छिड़काव भी जरूर करना है। और जायद मूंगफली री बात करा तो खरपतवार रे प्रकोप ने नियंत्रित करवारे वास्ते वने उचित पेंगिंग रे वास्ते इंटरकल्चरल ऑपरेशन में हाथ तू घुड़ई री आवश्यकता वेवे तो अणी वातरो भी ध्यान रखनो है सा।
1: और भिंडी री बात करा तो देखो भिंडी में यदि फलारो आकार 5 इंच लंबो हुए तो तुड़ई कर लेनी। तुड़ई रे केड़े आप देखो भिंडी री फसल में 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दरों यूरिया रो छिड़काव जरूर करना चाहे। ग्रीष्मकालीन हरा चारा री बात करा तो गर्मी रे महीना महीने हरा चारा री कमी काफ़ी आम बात है। अंडे बात है हरा चारा वाली फसलें जी हैं ज्वार बाजरा मक्का लोबिया आदि री बुवाई टेम टेम पे करनी चाहे सा।
0: बिल्कुल सावरानी रे लारे आप पशुपालन री बात करा भेरा भाई तो देखो अबार जो है तावड़ो घणो पड़ी रहो है तो पशु आरे बांधवारी उचित व्यवस्था करनी है। और वणा ने समय समय पे पानी पिलाणो है। वेती कोशिश दिन में 3 बार अगर वणा ने पानी पिलावा तो बढ़िया रहेगा। और वणा रे ज़्यादा ज़्यादा छाया री जगह में हुका वणा ने राखवारी कोशिश करनी है। और 80 जगह में वणा ने बांधना है जटे थोड़ी छाया वेवे थोड़ी सी ठंडक वेवे तो अणी तरीका तो मवेशियारों भी ध्यान रखना है और मौसम रे अनुसार आपनों भी ध्यान रखना है और सबरों ध्यान रखना है। तो आपना किसान भाई बहना ने एक बार और ले चला गीत गुंजन री दुनिया में और हुणा में एक और प्यारो सो राजस्थानी गीत।
1: बिल्कुल सर।

0: तो देखो सर, अच्छे से अपन राजस्थानी लोकगीत सुनाए हो। और अबे देखो, जानकारी बात आवे तो अपा अपने कार्यक्रम में ने रोज अपा चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार की कणी कणी योजना की जानकारी दा। तो आज आप यह बात बताओ कि अपने कार्यक्रम में ने कसी योजना लाया हो सा?
1: देखो सा भेरा भाई, जटे कार्यक्रम में योजना री बात आपा करी रिया। हाँ तो आपना किसान भाई बहना ने आपा बतावा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना तो अणि में भारत सरकार रा औषधि विभाग द्वारा चलाई जा रही एक कल्याणकारी पहल है। अनो उपयोग मुख्य रूपों एक औषधि केंद्र रे माध्यमों आम जनता विशेषकर गरीबा रे ब्रांडेड दवा री तुलना में 50% तो 90% तक सस्ती लेकिन उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवा उपलब्ध कराना है। अणिरे में योजना रा मुख्य आकर्षण री बात करा, सस्ती दवा रो उत्पाद अटे लगभग 1800 अधिक दवा जो है सर्जिकल उपकरण और किफायती दाम पे मिलिया करे है। और लारे लारे जटे समान गुणवत्ता री बात करा तो ये दवाइयाँ जो है गुणवत्ता प्रभावकारिता में महंगी ब्रांडेड दवा रे बिल्कुल समक्ष रेवे और दवाएं री उपलब्धता मतलब कि कोई भी

0: વેદ ડાક્ટરે પરચારે લારે લારે અણા કેન્દ્રાઉં દવાયા ખરીદી શકે સા.
1: बिल्कुल सही बात है सा. और देखो अनिमी ने आप महत्वपूर्ण लिंक्स और टूल्स की बात करा तो अपने अड़े बड़े नज़दीकी जन औषधि केंद्र रो पतो लगा रो बात है. आप जन औषधि केंद्र लोकेटर रो उपयोग कर सको. दवाएं री कीमत जांचनी यानी कि दवा री उपलब्धता और वना री कीमता री जानकारी री बात है. जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सको आप. और योजना री विस्तृत जानकारी री बात है आप देखो कि माई स्कीम वो पोर्टल भी देख सको. अब एक यह अति बढ़िया योजना है कि आप देखो कि सरजू भाई साहब भगवान नहीं करे कोई बीमार हुए या कंडे जरूरत हुए तो बाजार में महंगी महंगी दवाएं मिले.
0: बिल्कुल
1: सरकार रही एक अति अच्छी योजना है कि अड़ी महीने 50-90% तक सस्ती लेकिन उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध मिले जो कि आपने काम तो वही करेगा जो कि माने महंगी दवाएं करेगा और आपने पैसा री भी बचत रहेगा सा.
0: बिल्कुल सा. तो देखो सा कि बहुत ही बढ़िया योजना के बारे में जानकारी जो है अपना किसान भाई बहन ने दीदी सा. और आप कहो तो एक बार और ले चला वना ने गीत गुंजन री दुनिया में और करावा राजस्थानी गीतों मुलाकात.
1: बिल्कुल हुनाओ सा.

0: तो बेरा भाई देखो सा बहुत ही प्यारो सो राजस्थानी गीत हुणायो सा कि देखो पिछोला झोला खावे सा। और वास्तव में आपणो पिछोलो जो है भी अत्रो सुंदर की वो तो पूरो पाणियो झोले ही खातो रेवे सा। और देखो अड़ी सुंदर सा राजस्थानी गीत रे लारे अबे जानकारी ने आगे बढ़ाता तका आपा किसान भाई बहना ने बतावा कि पशु स्वच्छता और जागरूकता रे बारे में। तो देखो पशु स्वच्छता और जागरूकता री बात आवे भेरा भाई तो देखो पशुआरी स्वच्छता तो बहुत ही जरूरी है। यह सब अपना किसान भाई बहना ने आपा कहवा कि देखो पशु जो है वो ग्रामीण इलाका में एक बहुत ही बड़ा धन रे रूप में है। पशु धन अगर आपनों है तो आपा सबू बड़ा अमीर आ। तो वणी रे महीने पशु स्वच्छता रो ध्यान तो बहुत ही राखणो है। और अणी में जदि आपा स्वच्छता रो ध्यान राखी सकांगा जदि आपा पूर्ण रूप में जागरूक रहांगा। जिस तरह बार तावड़ो पड़ रहे हो तो वणी रे महीने भी देखो कि घना हारा माछरडान पनपी जावे। तो वणी पशु रे जो रेवारी ओरी है या वाड़ो है या पछे वनो कटी फार्म हाउस असो बनाई राख्यो है तो वनी पूर्ण रूप में आपणे स्वच्छता राखणी आपणी खुद री जिम्मेदारी है ताकि आपणा जो पशु है वे स्वच्छ रही सके। और वन्ने लारे लारे आपा जो है वो आपणो काम भी बढ़िया तरीके वे जावे और बना पशु आरे लारे आपणो घर परिवार भी बढ़िया चालतो रेवे सा।
1: बिल्कुल सा आप सही कह रहे हो कि देखो जटे ये बंदिया थकावे आण बोलिया जीव बटे साफ सफाई रो ध्यान रखनो है। पीवारो पानी जो अणारो है वो ठंडो पानी अच्छो पानी साफ पानी वेणो चावे। आणी बात रो भी ध्यान रखनो कि कटे यू नी वे कि बिल्कुल रात्रे टाइम पे तेज बरखा आई जाए ये बहाने बंदिया थकावे तो आलर आलर रहे पे सुबह अणारे बीमार वही जा अणार। आप देखो कि त्वचा नाक ये जो पैर सब देखना चाहवे कि भाई खुरपका मुंह पका रोग रो कही है कि वो लक्षण अगर थोड़ा सो भी नज़र आवे तो नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाइने अपने डॉक्टर साहब जांच करें ना पशुवारो इलाज करना चाहवे। और लाला रे आप देखो सरजू भाई साहब आप जो बात कर रहे हो कि जागरूकता रही तो अपने तो ध्यान रखना से अंडे अलावा गाँव महीने और अड़े बड़े जो भी पशु पालक है अणाने भी यो कहो कि भाई अपने अणबोलिया जीव रो विशेष रूपों ध्यान रखना है साहब।
0: बिल्कुल सा। और झणी ओरिया ने महीने अपना ठंडा चोपा बंदे तो वणी ने आपने जिस तरह वना रहे जो गोबर वगैरह सब हटाई ने बटा बाद में जो दो आड़ी गेट खिड़कियां थोड़ी देर रे वास्ते आपने खुली जरूर रखनी है।
1: जी
0: क्योंकि अगर आप खुली रखांगा तो वे जो भी दबिया तक जितना भी छोटा छोटा वे माछरड़ा है तो वे वणी हवाओं भाग जाएगा
1: जी।
0: और सुखो भी मिलेगा तो पशु भी आएगा और व्यवस्थित रूप में बैठ सकेगा आराम। तो आप चारों भी नाका अगर खावा रहो तो वो वणी गंदगी रे महीने नहीं रेवे तो बहुत स्वच्छता रो ध्यान रखांगा जदि जाइने आपनो जो पशु है वो स्वच्छ रही सकेगा और आपनो जो ये धन है पशु धन यो व्यवस्थित रूपो संजोई सकांगा सा।
1: बिल्कुल सही बात है सा। क्योंकि देखो कि अपने खेती बाड़ी रे कार्यक्रम में ने ये आप देखो कंधों कंधों मिले ना अपनों साथ देवे
0: हाँ
1: और
0: सा
1: आप देखो अणियों अपने अतिरिक्त आय भी वे तो अणि मात्र ध्यान रखना है।

0: स्वच्छता रो पूरो ध्यान रखनो है सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो जटे पशु स्वच्छता और जागरूकता रखेगा और पशु भी बढ़िया रहेगा और मनुष्य भी बढ़िया रहेगा। तो वणी में देखो एक बहुत दूर हुआ अपन एक महक आएगा, वह आएगा खुशी री। और खुशी री लहर जटे आवे तो क्यों ना भेरा भाई अपना किसान भाई बहना ने आपा गीत गुंजन दुनिया में ले चलना और हुणावा एक और राजस्थानी प्यारो गीत।
0: जी सर।

0: तो देखो सा, बहुत ही बढ़िया जानकारी जो आपने कराई, और जानकारी रे लारे लारे बहुत ही प्यारो सो मन भावन राजस्थानी गीत आपने हुनायो सा। और देखो सा, अभी कार्यक्रम ने आगे बढ़ाता तका जानकारी आपने करावा कि आज रो दिवस कई है। तो आज रे दिवस री जटे बात आवे बेरा भाई, तो आज रो दिवस है चाय दिवस। और देखो चाय रो नाम होनते ही तो देखो कि अपने सबने ही लाग गयो वेगा कि चाय वे तो पीला सा। जी सर, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर साल 21 महीने मनायो जावे। यो दिन चाय श्रमिकारी सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियां, निष्पक्ष व्यापार, चाय रे उत्पादन में सुधार रे वास्ते, एक स्थायी वातावरण रे बारे में जागरूकता पैदा करवा रे वास्ते जानियो जावे है। पहलो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2005 में दिल्ली भारत में आयोजित कियो गयो हो सा। और देखो सा, जटे बात करा संयुक्त राष्ट्र अनुसार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस तो प्रतिवर्ष तो यो मनायो जावे 21 तारीख ने, जाने कि आज आपा मनाई रहा। चीनी विद्वान चेन एंटियन अन्य आरंभ करता प्रवक्ता था, और संबंधित प्रस्ताव 21 दिसंबर 2019 ने पारित हुए हो। और अनिरे महीने संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन अणी दिवस रे आयोजन रो नेतृत्व करवारो आह्वान भी करियो गियो हो सा।
1: बिल्कुल सही बात है सर। देखो आज रो दिवस जो है, आप देखो चाय एक ऐसी आवश्यक वेगी है कि आप देखो कि हर जगह चाय, कोई मेहमान आयो तो चाय, कटे कहीं मुलाकात है तो चाय, कहीं बातचीत करनी तो चाय, खाली अगर आप सुस्ती और कहीं है तो चाय। आप देखो चाय एक ऐसी वेगी के मतलब एक आम वस्तु वेगी जो हर चीज ने जोड़ने रखे सा।
0: बिल्कुल सा। तो देखो जटे आप यह बात की कि हर जगत चाय, तो वणी बात पे एक बात याद आई कि चाय रा दीवाना रे वास्ते अटे बेहतरीन आपा दो लाइन शायरी वणा ने हुणावांगा। तो अणिरे महीने वणारो एक एहसास जो है वो वा चाय चाय चुस्की, और वने लारे लारे एक खूबसूरत एहसास बणिरे महीने बयावेगा सा। तो देखो मोहब्बत और चाय, देखो चाय जे पीवे जणा ने एक मोहब्बत वे जावे वणी चायू। तो शाम री ठंडक, तुम्हारी यादों का पहरा, एक कप चाय और बस इश्क है गहरा। देखो सा कि इश्क जो है और मोहब्बत अगर चाय जने वे जावे तो कई बात करनी है सर। देखो सुकून रो एहसास, फुर्सतरा पल, चायरी प्याली अने बिना हर शाम है खाली। तो
1: जी
0: भेरा भाई देखो सा कि चायरी लत लागवा लाग जा तो वणी रे वास्ते भी एक बात याद आई है जो आपण किसान भाई बहना ने बताऊं कि थारी याद रो नशो है अणि चाय।

0: पैरों खुमार हर घूंट में बसे है थारो ही प्यार।
1: बिल्कुल
0: और
1: सर,
0: देखो जटे वरका रो टेम वे फेरा भाई, तो अणी रे महीने तो और देखो कि वरका और चाय, तो बारिश री बूंदा चाय री चुस्की, यही तो है जिंदगी री असली खुशी फेरा भाई।
1: सही बात
0: तो
1: है
0: देखो
1: सर।
0: बहुत ही प्यारी सी बात रे लारे, अणी चाय ने आप आटे विराम देवा और ले चला पाची खुशी री दुनिया में की गीत गुंजन री दुनिया में। तो किसान भाई बहना ने हुणावा एक और राजस्थानी गीत।
1: बिल्कुल सा हुणा।

0: तो देखो सर, अच्छे सो राजस्थानी लोकगीत सुनाए हो आपा।
1: हाँ सा
0: अभी देखो आपा ज्यादा ज्यादा एक बात कहा, मौसम चल रहा है गर्मी रो,
1: बिल्कुल सा।
0: गर्मी के टाइम पे खाओ पियो रो पूरा ध्यान रखो। गर्मी रो मौसम में 11 बजे 4 बजे तक रो टाइम मशो वे, जन टाइम तेज गर्मी वे, तो अगर आवश्यक कार्य नहीं वे तो
1: बिल्कुल
0: ज्यादा
1: सा।
0: तावड़ा में निकलना नहीं है। पानी पियो रो, नींबू पानी रो, अणा वाता रो, विशेष रूप ध्यान रखना। कपड़ा लंबी आस्तीन रा पहनना है आपने, और छोटा बच्चा और बुजुर्ग रो और खुद रो भी ध्यान रखना है सा।
1: बिल्कुल सा। तो भेरा भाई देखो, बहुत ही प्यारे सो राजस्थानी गीत थोड़ा यो बने लारे लारे जानकारी दी थी, और जानकारी रे लारे लारे आपा मन भावन राजस्थानी गीत संदेश सब कुछ आपा किसान भाई बहना ने हुनाया सा। और देखो सा भेरा भाई, जटे आपा बात करा कि आपने कार्यक्रम महीने देखो कि रेवारो और आपणा किसान भाई बहना रे लारे रेवारो मन तो बहुत करी रियो है, पर घड़ी री आड़ी देखा तो अणी कार्यक्रमों आपने चालवारो टेम वे गयो है सा। तो चाला सा भेरा भाई, जय जवान
0: जय
1: जय किसान।
0: किसान।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण परिवारों का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम खेती और घर, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा था। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

0: ये गुलशन, फूल, कलियां, बहार, वादियां, ये मौसम, खेत, हरियाली, पहाड़, बर्फ, ये कायनात, कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी नहीं,
0: कुछ भी नहीं, गरन में वो नहीं,
1: वो है कौन?
2: तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
0: नाम?

0: ये गुलशन फूल कलियां बहार वादियां, ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ, ये कायनात कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी नहीं,
0: कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं,
1: वो है कौन?
2: तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
0: नाम?

0: कुछ भी नहीं, गरन में वो नहीं।
1: वो है कौन?
2: दान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
0: नाम?

फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। अब से बस कुछ ही पलों में आपको सुनवाए जाएंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों में पहले होगी समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे सुनिए न्यूज 8:09। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन

0: प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
1: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

0: रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके. इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है.
1: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी. पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की.
2: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है. इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला. यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है. ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा

0: पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन होजमार्क कजर्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's 5-nation visit guarantees advantages for every segment of the society. Asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. And in IPL cricket match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's 5-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors including technology, innovation, high precision, defense, digital data centers, quantum computing and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interest. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent and market opportunity.
3: America and India truly are working as natural partners. We complement each other. America is looking for a trusted

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवाते हैं फिल्म वारिस से कुछ नगमे। लीजिए पेश है ये पहला नगमा आवाज महेंद्र कपूर की।

फिल्म संगीत के इस प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वारिस से चंद नगमे। लीजिए पेश है ये अगला नगमा लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

फिल्म संगीत के इस प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही फिल्म से चंद्रनगमे। ये फिल्म है वारिस। सुनते हैं इसका ये अगला गीत। आवाज लता मंगेशकर।

सफर कास्ट स्वर धरोहर रिफ्लेक्ट आकाशवाणी's कमिटमेंट टू इनोवेशन व्हाइल प्रिजर्विंग इट्स कल्चरल सोल। इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग मीडिया लैंडस्केप्स आकाशवाणी रिमेन्स स्टेडफास्ट एंड रेलेवेंट, टचिंग हार्ट्स, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स and truly being the voice of the people, yesterday, today and tomorrow. Guided by its noble motto, Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai, Akashwani continues to serve as the heartbeat of India.

हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप

फिल्म संगीत के इस प्रोग्राम में अगला गीत हमने आपके लिए चुना है फिल्म किला से। इस गीत को गाया है श्रीशा ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं तक। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों में आपको सुनवाए जाएंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों में पहले होंगे हिंदी में समाचार, रात्रि 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके

लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।